0: Dakhshin shrein tat panang shin tikrim sena tsa tsa ngaji Akashvani le ne shwen jik tang in tsa tu chu tu gyat chadu kasa da Akashvani dili ne sngun la samaje prabha.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रपति दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगे। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया।
2: परेड में भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था। ये भारत और सेशल्स की करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के अंतर्गत युद्धपोत आईएनएस तरकश और सर्वेक्षण पोत आईएनएस इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी के निमंत्रण पर सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर हैं। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है जो साझा ऐतिहासिक सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच करीबी और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी तथा सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करेगी। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और तरक्की को महत्व देता है। उन्होंने कहा कि मॉरिशस को स्वास्थ्य संपर्क सतत विकास और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन में योगदान देना जारी रहेगा। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत के विजन महासागर और पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति के तहत भारत मॉरिशस मजबूत रणनीतिक साझेदारी के महत्व और ग्लोबल साउथ के लिए साझा प्रतिबद्धता पर सहमति प्रकट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया।
3: सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी से मिले इस सम्मान से टिकाऊ विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लंबे समय से जारी प्रयास और उनके ग्रीन विजन को मान्यता मिली है। यह सम्मान टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री को मिले ऐसे ही कई सम्मानों की कड़ी में एक और उपलब्धि है। इनमें खाद्य और कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार शामिल हैं। इस सम्मान से पता चलता है कि सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र में क्षमता निर्माण, पर्यावरण संबंधी कार्यों, टिकाऊ विकास के प्रयासों और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती भूमिका को भरोसेमंद साझेदार के तौर पर अत्यधिक महत्व देता है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
4: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीशा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। इस दौरान एथेंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भारतीय और ग्रीक उद्योग जगत के नेताओं के साथ बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रक्षा, खाद्य और कृषि जैसे विषयों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पदक प्रदान करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता अलंकरण प्रदान करेंगे। ये अलंकरण असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने 8 जून को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पदक प्रदान किए थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चों के जीवन विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये कार्यक्रम जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए घर और समुदाय में ही स्वास्थ्य सेवाएं देगा। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर और मनसुख मांडविया तथा राज्य सरकार के कई मंत्री और विभिन्न देशों के राजनयिक हिस्सा लेंगे।
5: 150 से अधिक विशेषज्ञ और जापान, सिंगापुर, यूएई, यूक्रेन और रवांडा जैसे भागीदार देशों के प्रतिनिधि मध्य गुजरात के आर्थिक विकास पर मंथन करेंगे। इसके साथ ही सम्मेलन में आयोजित भव्य प्रदर्शनी के 150 से अधिक स्टॉल, स्थानीय एमएसएमई, उन्नत तकनीकी स्टार्टअप और अमूल एवं जीएफएससी जैसे बड़े उद्यमों की क्षमता और नवाचार को प्रदर्शित करेंगे। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, वडोदरा।
1: महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राज्यीय परीक्षा रैकेट शामिल 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
6: जांच अधिकारियों ने लीक हुए प्रश्न पत्र के स्रोत का पता लगाने, वित्तीय लेन देन की जांच करने, महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में बेचे जाने की छानबीन कराने तथा इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों की पहचान कराने के लिए 10 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी। टीईटी परीक्षा जो रविवार 28 जून को आयोजित होने वाली थी, भिवंडी पुलिस द्वारा परीक्षा से 1 दिन पहले पेपर लीक का भंडाफोड़ किए जाने के बाद स्थगित कर दी गई। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी ने दवाओं, सर्जिकल सामान और मेडिकल उपकरणों की खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोप के मामलों में तत्कालीन स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक डॉक्टर वत्सला अग्रवाल और केंद्रीय खरीद एजेंसी के उपलेखा नियंत्रक नीरज चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। उड़ीसा की पूरी तीर्थ नगरी में आज सवेरे श्री जगन्नाथ मंदिर में देव स्नान यात्रा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु जुटे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र स्नान उत्सव है।
7: सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भाई बहन देवताओं को गर्भगृह से औपचारिक रूप से स्नान वेदी तक ले जाया गया। वहाँ वैदिक मंत्रों के उच्चारण, शंख की ध्वनि और भक्ति संगीत के बीच पवित्र जल के 108 घड़ों से उनका स्नान कराया जाएगा। देव स्नान पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मनाया जाने वाला यह त्योहार वार्षिक रथ यात्रा से पहले देवताओं के सार्वजनिक दर्शन का मौका होता है। उत्सव को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बढ़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है।
8: धेमाजी जिला प्रशासन ने तत्काल जन सुरक्षा परामर्श जारी करते हुए चेतावनी दी है कि यदि अवरुद्ध जल अचानक नीचे की ओर प्रवाहित होता है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नदी तटों, नालों, अर्द्रभूमियों, तटबंधों तथा अन्य निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से सरकारी निर्देशों और आधिकारिक सूचनाओं पर लगातार नजर रखने, स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करने तथा आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहने को कहा है। इस बीच बाहरी क्षेत्रों से आए तेज बहाव के पानी ने जिले के जोनाइको डिस्ट्रिक्ट के कई हिस्सों को जलमग्न कर दिया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं दिल्ली, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में कल तक लू की स्थिति बनी रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विषय संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112317 और 0112314444। खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न कर लिया है। लंदन में निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। उधर आयरलैंड ने दूसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 1 रन से हरा दिया है।

0: हर बैंक के अलग अलग केवाईसी पेपर्स। काश एक चाबी होती।
1: एक चाबी है सीकेवाईसी आईडी।
0: सीकेवाईसी मतलब?
1: बैंक आपके केवाईसी रिकॉर्ड सीकेवाईसी रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14 डिजिट सीकेवाईसी आईडी। ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह केवाईसी अपडेट तो सब जगह अपडेट।
0: वाह, आरबीआई कहता है
1: केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
2: फिल्म लुई टिक्रिमिना कसता राम तेरी गंगा मेली फिल्म लो लता मंगेशकर ने सनाजत लुडियाजत कन हसरत जयपुरी लुआंश्रिकन रविंदर जैन।

0: ngaji akashvani le ne shwen chi tang ins nga to chu chu chu cha du ka sa ta fm go delhi dikrim sana zat
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। इस सम्मान को पाने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। समारोह की परेड में भारतीय नौसेना और थल सेना की टुकड़ियों ने भाग लिया। इस अवसर पर भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस तरकश और आईएनएस इक्षत विक्टोरिया में तैनात रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की जनता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। समारोह में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम भी मौजूद थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में सेशल्स भारत के विजन महासागर का एक अहम साझेदार है और इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की, साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और प्रगति को विशेष महत्व देता है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की संयुक्त परियोजनाओं से मॉरिशस में स्वास्थ्य संपर्क, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन दिया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी ने उन्हें ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी को इससे पहले भी सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। इनमें संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और

0: कार्यों को उनके असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। वेनेजुएला में बुधवार को दो जबरदस्त भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,450 हो गई है। नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट जॉर्ज रोड्रिगेज ने बताया कि 7.2 और 7.5 तीव्रता वाले दो जबरदस्त भूकंपों के बाद देश में हल्के से मध्यम स्तर के 430 झटके महसूस किए गए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। लंदन में निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: The news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi attended the National Day celebrations marking the 50th anniversary of independence of Seychelles. Mr. Modi attended the celebrations as the guest of honor, becoming the first Indian Prime Minister to be accorded this honor. An Indian marching contingent comprising Navy and Army teams participated in the parade. An Indian naval band also formed part of the Indian marching unit, underlining the close and special India-Seychelles partnership. In a special gesture, INS Tarkash and INS Ikshak were docked at Port Victoria, highlighting India's long-standing friendship with Seychelles. Prime Minister Modi was conferred the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. The award, which was presented by President of Seychelles, Patrick Hamini, acknowledges PM Modi's long-standing push for sustainable growth and his green vision. PM Modi thanked the people and the government of Seychelles after being conferred the Guardian of the Blue Horizon. Prime Minister Narendra Modi met his Mauritius counterpart, Dr. Naveen Chandraram Gulam, in Seychelles yesterday. The two leaders discussed the ongoing cooperation between India and Mauritius. They further reviewed the progress made in the implementation of the special economic package extended by India. The two prime ministers agreed on the significance of the India-Mauritius enhanced strategic partnership under India's Vision Mahasagar and Neighbourhood First policy and their shared commitment to the Global South. President Draupadi Murmu will present gallantry awards at the second Defence Investiture Ceremony of 2026 at Rashtrapati Bhavan in New Delhi today. The President will confer gallantry awards to personnel of the Defence Forces, Central Armed Police Forces and State Union Territory Police in the evening. These awards are given away in recognition of exceptional acts of bravery by personnel of the Armed Forces, Central Armed Police Forces and other security agencies. In Odisha, lakhs of devotees thronged the pilgrim city of Puri this morning as the sacred Deva Snan Yatra or the Snan Yatra or the ceremonial bathing festival of Lord Jagannath, Lord Balabhadra and Devi Subhadra is being observed with traditional grandeur at the Sri Jagannath temple. The deities have been brought in a ceremonial procession to the Snan Bedi, where they will be bathed with 108 pots of sanctified water drawn from the temple's sacred golden well amid Vedic chants, blowing of conches and devotional music. The annual ritual, held on the auspicious occasion of Deep Snan Purnima, marks an important prelude to the world-famous Rath Yatra. In Gujarat, the fourth vibrant Gujarat Regional Conference will begin today at GSFC University in Vadodara under the theme Regional Aspirations, Global Ambitions. Union Ministers Rajnath Singh, Manohar Lal Khattar, Mansukh Mandavia, alongside key state ministers and global diplomats, will take part in the two-day conference, which aims to boost industrial development in central Gujarat region. Venezuelan National Assembly President George Rodriguez said that the death toll from the two powerful earthquakes that struck Venezuela Wednesday has risen to 1,450 after the two powerful magnitude 7.2 and 7.5 earthquakes. Venezuela has recorded 430 light to moderate aftershocks, Rodriguez said in the latest government update on the national emergency. Earlier on Saturday, he said on state television that 3,238 people have been injured and 3,142 families affected by the disaster. Indian stock markets opened flat today, with investors and traders closely monitoring developments surrounding the US-Iran ceasefire and upcoming diplomatic discussions. Nifty opened at 24,062, up 6 points, while Sensex started marginally lower at 77,055, down 45 points in the early trade today. Meanwhile, the international benchmark Brent crude rose 1% to $72.78 per barrel, while US West Texas Intermediate crude gained more than 2% to nearly $71 per barrel. In the knockout stage of the FIFA World Cup, Canada beat South Africa 1-0 for its first knockout match victory at Los Angeles in the United States. Stephen Eshtukuyo of Canada scored the goal in the second minute of second half stoppage time. Co-host Canada hung on with strong defensive play in the final minutes and advanced to face the Netherlands or Morocco in Houston on Saturday, July 4th. And that is the end of this news bulletin.
2: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर. और श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 10:10 और पूरे 15 सेकंड हो चुके हैं और ये समय है ईमेल पर आधारित आपकी पसंद के फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपकी पसंद का. सबसे पहले आपको बताते हैं अपना ईमेल आईडी, जिस पर आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना संदेश, अपनी पसंद के गीत के साथ भेजना है. तो नोट कीजिए, हमारा ईमेल आईडी है iprediodelhi@gmail.com, iprediodelhi@gmail.com. और आज के कार्यक्रम में मैं हूं आपका हमसफर सिद्धार्थ सिंह. और चूंकि ये फरमाइशी गीतों पर आधारित कार्यक्रम है, तो हम आपसे यही कहेंगे कि अपनी पसंदीदा गीत की तो आप हमसे फरमाइश कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ आप हमें संदेश भी भेज सकते हैं. और आप जिंदगी के बारे में क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है जिंदगी में क्या होना चाहिए, क्या कुछ खास होना चाहिए, इसके बारे में भी अगर आप हमें कुछ लिख कर भेजेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा. और मैं देख रहा हूँ कि इस समय हमारे इनबॉक्स में बहुत सारे संदेश लगातार आ रहे हैं. और सबसे पहले जो संदेश आया है, लिखते हैं, अपनी पसंद का कोई भी गीत सुना दें, गोल्डन रेडियो श्रोता संघ, राज पैलेस, मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा. और इनके साथ ही शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से हमें सुन रहे हैं मुन्ना भाई सोनकार, पिंकी सोनकार, आर्यन कृष्णा और पीहू सोनकार. इन्होंने धन्यवाद दिया है. तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें मैसेज भेजा है और अपनी पसंद हमसे साझा की है. और हमारे पास एक और मैसेज है, नमस्कार, अपनी पसंद के किसी भी गीत में हमें शामिल करें, मैं इंतजार में हूं. धन्यवाद. नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहार से, मुसर्रत जहां, नाज तलहत जहां, फरहत जहां और परिवार के सभी सदस्य इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं. लेकिन आप जिंदगी के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, ये भी हमें जरूर लिखकर बताएं. और पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता, शशांक और सीमा ने भी अपना संदेश भेजा है और लिखते हैं कि आपको बहुत बहुत नमस्कार. आपको भी नमस्कार. और हमें लिखते हैं, आदाब नमस्कार आरजी सिद्धार्थ, आपको और हमें किसी भी गीत में शामिल करें, ये लिखती हैं सलमानी बेबी आलिया, आयान बाबू आपका हर पल खुशियों से भरा हो। तो जिंदगी इसी चीज का नाम है, जिंदगी के जो पल हैं वो अगर खुशियों से भरे नहीं होंगे तो जिंदगी में काम कैसे चलेगा। इसीलिए कहते हैं कि जिंदगी हर मोड़ पर कुछ नया सबक दे जाती है, जो मुस्कुरा कर चल पड़े मंजिल उसी को मिल जाती है। तो आगे बढ़ना ही, चलते रहना ही जिंदगी का नाम है, और जिंदगी के रास्ते ये उतार चढ़ाव भरे हैं। तो इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि वक्त की ठोकरों ने इतना सिखा दिया हमें, अब हर दर्द भी मुस्कुराना आ गया हमें। तो हर दर्द में भी मुस्कुराना जब हमें आ गया है तो हमको यूं ही चलते रहना है। और आइए सुनते हैं पहले ये प्यारा सा गीत।

0: जी हाँ, ये है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर 10:31 और 9 सेकंड्स हो चुके हैं और ये वक्त है आपकी फरमाइशों का, यानी आपके अपने दिल के मेल बॉक्स का। तो आप हमें लिखकर भेज सकते हैं वो गीत जो आप सुनना चाहते हैं, और क्योंकि मेरे पास इतने सारे मैसेजेस, इतने सारे ईमेल्स होते हैं कि मैं सबकी फरमाइश तो पूरी नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, कुछ लकी श्रोता आज जरूर अपनी फरमाइश सुन पाएंगे। वेल, आपको कहाँ पर मैसेज करना है ये भी बता दूं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं fmgoldairdelhi@gmail.com पर, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9868686753 पर। फिर से बता दूं, fmgoldairdelhi@gmail.com या व्हाट्सएप 9868686753 यानी 9868686753 पर। तो बस जल्दी से लिख दीजिए अपनी पसंद, अपनी फरमाइश, अपने फिल्म के नाम के साथ गीत के बोल लिखिएगा और अपना नाम, शहर का नाम जरूर मेंशन कीजिएगा और फिर मुझे रवाना कर दीजिए इस दोनों एड्रेसेस पर। वेल, अब सबसे पहले तो मैं कुछ मेल्स, कुछ मैसेजेस को शामिल कर लेती हूँ, किस किस ने हमें लिखा है। चलिए सुनते हैं जरा नाम कौन कौन है हमारे साथ जुड़े हुए। महाराष्ट्र पुणे से सुनील, सुषमा, राजवीर, अनन्या गायकवाड़ हमारे साथ जुड़े हैं, और शकुंतला यादव, उग्रसेन यादव, गरिमा नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। साथ में गंगा सिंह रावत रामपुर रोड हल्द्वानी उत्तराखंड से, कमल बलूजा, मधु बलूजा, सागर बलूजा, मजनू कटीला से, और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा और माही मलिक, और संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे शाहजी नगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से, कृष्णा पार्क से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना, अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, माल्यान सरधना मेरठ से, और सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर कुशल, नीति सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन, राजेंद्र जी, पद्मा टोकीस, नेपानगर मध्य प्रदेश से, शबाना भारती, नवाब अहमद भारती, अरहान अहमद और सुफियान नवाब ने हमें लिखा है बल्ली मारान से, और सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम, आदिब हमें लिख रहे हैं, अदीब हमें लिख रहे हैं गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खुरवाल, कमला रानी, कितिका खुरवाल और भानु प्रकाश, नबी हसन अब्बासी, शाहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन, रसीद वारसी, अनम यशरफ अब्बासी हमें मारहरा दरवाजा एटा से लिख रहे हैं, सिकंदरा राव से मुनीब अब्बासी और इशरत परवीन का हमें मैसेज मिला, और हमें लिखा है संजिता मार्कंडे, संजय मार्कंडे और बेबी किट्टू ने खंडवा एमपी से, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, आरजू, नव्या बिजानिया ने सतवीर सिंह बिजानिया के साथ सिरसा हरियाणा से, और मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज सरफराज, फरदीन, सुहान अरजान, अबान और पूरे परिवार ने मोहल्ला चौकुंडी बुलंदशहर से, और ये मैसेज हमें किसने भेजा है, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर और आराध्या कुमारी ने, धर्मेंद्र शिपा, कपिल, ईशान, पूजा भोपालगढ़ राजस्थान से हमें लिख रहे हैं, सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांतिनगर सोनेपत से। हाँ, एक चीज आपसे कहनी थी अनीता जी, कि जब आप ध्यान से अगर कार्यक्रम को सुनेगी तो आपको पता चलेगा कि हमने क्या कहा और आपने क्या सुना। हमने पिछली बार भी कहा था कि भाई व्हाट्सएप नहीं चल रहा था कुछ तकनीकी वजहों से, और आप नाराज थी कि हमने आपका मैसेज नहीं पढ़ा। भाई व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करना था उस दिन क्योंकि व्हाट्सएप नहीं चल रहा था। वेल, आज दोनों चीजें चल रही हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं और आपका मैसेज शामिल भी हो गया है। और ये जो नाराजगी सबकी रहती है ना कि मेरा गीत नहीं चलाया, तो आप सोच सकते हैं इतने सारे मैसेजेस होते हैं और टाइम बहुत लिमिटेड होता है, तो हम उसमें कितने गाने चला सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2-3 लोगों की पसंद। तो इस बात को निराश मत हुए सोचकर कि आज आपका गाना नहीं बजा, किसी रोज जरूर आपको भी मौका मिलेगा, तो बेफिक्र रहिए, जुड़े रहिए। और हमारे पास दिग्दर्शन भाई, मास्टर जीवीएम जैन का, मलयान सरधना मेरठ से, फिर से वही सारे नाम लिखकर आपने हमें भेजा है, और इसके साथ हॉली चौक उत्तम नगर से जयराम खुरवाल, सचिन खुरवाल, अमन दीपांशु का मैसेज हमें मिला है, साथ में हमें मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ का मैसेज, अफरोज शेख का हमें मैसेज मिला है नेमुआ सुपौल बिहार से, और गाड़गे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई, शैलेश कुमार, प्रतीक्षा, स्वप्निल स्वच्छता का मैसेज। मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज काजल, सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह का ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से हमें मैसेज मिला। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर, मेहराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से हमें लिख रहे हैं। ओम प्रकाश तेग चंदानी ग्रेटर कैलाश से हमें लिख रहे हैं और साथ में प्रवीण हागोणे, योगिता कुमारी प्रियाली और पार्थ हागोणे और पूरे परिवार ने हमें अमरावती महाराष्ट्र से लिखा है। और भटीपुरा महोबा से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता ने हमें लिखा। महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश, प्रगेश और प्रितेश पूरे संघई परिवार के साथ जिनेन्द्र हमें लिख रहे हैं। परभणी से और चिन्मय महतो, रेखा महतो, शिवांश मंडल ने कदमा जमशेदपुर से हमें लिखा है। वीरम गांव गुजरात से जीत भावसार, प्रमिला भावसार का हमें मैसेज मिला। बबलू साहू, जमुना देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू का हमें मैसेज मिला है। नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। संदीप मक्कर, ज्योति मन्नत, भरत कमल साहनी, पिंगावाला चौक, गोराया, जालंधर से हमें लिख रहे हैं। और इसके साथ ही ये मैसेज हमें सलार पहलगाम कश्मीर से मिला है, पीरजादा मिराजुद दीन का। और किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खान, सबीहा जुबैर, अंजुमन खान का हमें मैसेज मिला। पंकज मोहड़ अमरावती से हमें लिख रहे हैं। अर्चना वर्मा, मास्टर अशोक वर्मा, जिला खरगोन सिनावत मध्य प्रदेश से अनुज आयुषी, रमेश चंद्र और शेख मूसा भाईजान के साथ, भाई राजकुमार बुड़ाना के साथ और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश जगताप का मैसेज। सलीम अख्तर, रेशमा बेगम अलीगढ़ से हमें लिख रहे हैं। शमसुल कमर राही, शाहीना, शाहीन फातिमा, अनु खान, अदनान खान, फैजान हमें गंजरुणवाड़ा से लिख रहे हैं। और राजकुमारी, अतर सिंह, अनुज, अंजलि, डॉक्टर पारुल, आद्विक, समयपुर, दिल्ली से हमें मैसेज भेज रहे हैं। और बहुत सारे मैसेजेस हमें लगातार मिल रहे हैं, जरूर शामिल करने की कोशिश रहेगी। लेकिन फिलहाल जिस गीत को मैं शामिल कर रही हूं, इसकी फरमाइश हमें भेजी है गंगा सिंह रावत ने, रामपुर रोड, हल्द्वानी, उत्तराखंड से। तो ये रहा आपकी पसंद का गीत फिल्म सच्चा झूठा से रफी साहब। और
1: यूं ही तुम मुझसे बात,
0: ये रहा आपके

0: तैयार हो जाओ, दिल्ली सरकार लेकर आया है मौका।
1: 400 से भी ज्यादा आम, देखने और खरीदने का सुनहरा मौका।
2: जी हाँ, दिल्ली टूरिज्म द्वारा आयोजित 35वां आम का महोत्सव,
1: जिसमें है मैंगो ईटिंग कॉम्पिटिशन पुरुषों और महिलाओं के लिए खास, कल्चरल रंगारंग प्रोग्राम, खान पान और खरीदारी का साथ।
3: 3 से 5 जुलाई दिल्ली हाट जनकपुरी नई दिल्ली में दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम के रंग में घुलिए, आना ना भूलिए।
4: तू आन है, तू शान, तू ही देश का अभिमान है। अब आप भी बढ़ाएं देश का सम्मान, शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर बनकर भारतीय नौसेना की एग्जीक्यूटिव एजुकेशन और टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन करने के लिए अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 27 जुलाई 2026। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.joinindiannavy.gov.in। जॉइन इंडियन नेवी।
5: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं दिल का मेल बॉक्स और आपकी पसंदों के गीत हमारे पास चल रहे हैं। तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष, राजा चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन ने हमें मैसेज किया है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रशिता, केशुर धान और आपका मैसेज हमें मिला है। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल और जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप ने हमें लिखा है मोहाली चंडीगढ़ से, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बिट्टा बजाज का मैसेज हमें मिला और हमें लिखा कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा ने, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र और नोखेलाल वर्मा का हमें दत्तरेंगी भाटापारा से मैसेज मिला है, छत्तीसगढ़ से, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर शिंदा, जसवीर जसी, सीता और गीता का मैसेज, सतीश अनेजा, बिमला अनेजा चंडीगढ़ से हमें लिख रहे हैं और महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेश पुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी का हमें मैसेज मिला है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से। हमें लिखा एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट ने और सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा और भाई सुचा सिंह पाठक का अनारकली बाजार जगराव से, कमलेश बबलेश पवार, टैनी पवार, मनीष पवार का हमें गांधी चौक बाड़मेर से, रामदेवरा से, दिनेश चौहान डांगरी से, बाबूराम जयपाल, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा का मैसेज और डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, सोनम अदीबा, डॉक्टर दानिश अंसारी का मैसेज, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य और परमानंद आर्य, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी का मैसेज, अनवर साबरी, शब्बो साबरी, मुदस्सिर साबरी, मुजक्किर और जरीफ का मैसेज, दाऊद सराय सहारनपुर से हमें मिला है और प्रदीप सलूजा, संगीता सलूजा ने हमें जनकपुरी दिल्ली से लिखा है और साथ ही मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन बाबू अहद और मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत सादिया का हमें मैसेज मिला है, दादा बाबू रोड गिरडी झारखंड से। साथ ही हमारे पास और भी ढेर सारे मैसेजेस पहुंच रहे हैं। महेश अग्रवाल, मीना अग्रवाल ने बहादुरगढ़ हरियाणा से हमें लिखा है और हमारे पास बहुत सारे रिपीट मैसेजेस पहुंच रहे हैं। कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा का मैसेज हमें मिला, संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, अपार ढिंगिया का मैसेज बागपत यूपी से, पीएस नाहवकर, निर्मला नाहवकर, विशाल नाहवकर, नरवेल महाराष्ट्र से, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान ताड़े और आशीष मोहिरकर का मैसेज और हमारे पास वड़िंगखेड़ा से पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा का मैसेज, राम नरेश चेक का मैसेज हमें मिला है, करण चेक के साथ रेखा चेक, अल्पेश यादव, सृष्टि यादव और संगम विहार हनुमान मंदिर से हमें लिख रहे हैं। साथ ही ये मैसेज शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा, भागवत वर्मा का ततरेंगी से हमें लिखा है, कुमार हीड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम का मैसेज और गन्नौर से हमें लिखा है आदिल कमर तस्दीक, अली मुजफ्फर अली ने साथ में ये मैसेज हमारे पास सिद्धार्थ भाई जी का मैसेज पहुंचा है, कहां से नाम नहीं लिखा है जगह का, चले कोई बात नहीं। और इसके अलावा हमारे पास मैसेज पहुंचा है सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर और कुमार गौरव मंदूरकर का, डाबकी रोड अकोला से। साथ में ये बहुत सारे मैसेजेस रिपीट हैं, बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत मयंक का मैसेज हरियाणा से और सुधाकर राजे

0: जाधव प्रशांत राजे संचित वयाल प्रथमेश प्रणाली सर्वत सानवी हर्षदा का मैसेज हमें कालेगांव जाफराबाद से मिला है और भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव दिवेंदु भूषण का मैसेज संस्कृति पौरुष के साथ व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से साथ में ये मैसेज हमारे पास शेरवानी स्कूल गंजुड़वाला से आफ्ताब अंसारी रियाज मोहम्मद अनवर मास्टर लुबना अंसारी आलिया अंसारी का और संदीप मक्कड़ ज्योति मक्कड़ का हमारे पास फिर से ये मैसेज हो गया ये लीजिए। तो भाई अभी इससे पहले कि मैं कुछ नए मैसेजेस को ढूंढूं विजय प्रियंका त्वेषा पल्लवी एकता का मैसेज हमें मिला है और इसके साथ साथ संबलपुर कांकेर से भागुराम यादव ज्योति यादव और जसवी यादव का मैसेज। तो चलिए अब जल्दी से भगवती सिंह का मैसेज भी आ गया पुल प्रहलादपुर नई दिल्ली से और हमारे पास इतने सारे मैसेजेस हैं लेकिन रिपीट मैसेज जब आप करते हैं तो मुझे ढूंढना पड़ता है। राजेश जैन बिट्टू जैन संजीव जैन गोटना जैन का मैसेज मोलापुर दाखा से और श्रीपाल गोयल बहादुरगढ़ से हमें लिख रहे हैं। साथ में हमारे पास सुरेश नारंग का आशा नारंग के साथ सहारनपुर से मैसेज पहुंचा। तो चलिए बाकी के मैसेजेस को शामिल करने की कोशिश करूंगी लेकिन फिलहाल एक गीत आप तक पहुंचाती हूं और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल सचिन खोरवाल अमन खोरवाल दीपांशु खोरवाल ने। ये रहा गोपी फिल्म से आप सबकी पसंद का गीत।
1: गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग 1 2 3 4 अरे 1 2 3 4 मैं कैसे हूँ 1 2 3 4
2: बड़ा है अंग्रेजी बोलने वाला
3: कॉफी वाटर स्टैंड राइट हैंड बंदूक बैंड तीन पटा

अब वक्त बहुत कम बचा है, जल्दी से कुछ और मैसेजेस को शामिल कर लेती हूँ। ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से हमें लिखा है किसने राम शरण विश्वकर्मा ने, और हमारे पास मैसेज पहुंचा है गांधीनगर गुजरात से जीके परमार, ज्योत्सना, हर्ष और दीपल का। और ये मैसेज हमें लिखा है बहुत सारी तारीफ करके बबलेश पवार बाड़मेर से हमें लिख रहे हैं, साथ ही राजेंद्र जटोलिया, उषा, कृष्णा, पूजा और कोमल का हमें मैसेज मिला है दिल्ली नांगलोई से, और संतोष नामदेव का हमें मैसेज पहुंचा है सार्थक नामदेव के साथ समर्थ और शौर्य के साथ, कहां से, बघेरा दुर्ग से। और सुशील पठानिया, चंदा और अंजलि सचिन का मैसेज हमें नादौन हमीरपुर एचपी हिमाचल प्रदेश से हमें मिला है। अमित विश्वकर्मा देहरादून से हमें लिख रहे हैं, और साथ में जगदीश कुमार का हमें मैसेज मिला है राहुल और ऋतिका का नांगलोई से हमें लिखा है। जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी, पर्ल विलिस का मैसेज जनकपुरी सहारनपुर से, दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा का रिंगनी छत्तीसगढ़ से, राजकुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार, प्रमोद कुमार गांव फ्रांसी हिसार से हमें लिख रहे हैं, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया का दिशानी और निमित आहुजा के साथ मैसेज, स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप गुरनूर, शुभदीप गुरलाल और अविराज का मैसेज जिला फिरोजपुर पंजाब से, और ये मैसेज विठल करमदिया, शोभा करमदिया, थानला जिला झाबुआ एमपी से हमें लिख रहे हैं, दीपू, विक्की, पूना, राम, यश, आराध्या, धूमदारा परिवार लिख रहे हैं रघुपीर नगर से, और बहुत सारे मैसेजेस हमें लगातार मिलते रहे इस कार्यक्रम में। पंजाब से हमें लिखा है किसने, राजेंद्र कुमार सचदेवा ने, और कैलाश शर्मा गुरुग्राम से हमें लिख रहे हैं। साथ में हमारे पास और भी ढेर सारे मैसेजेस हैं, लेकिन वक्त अब बहुत कम बचा है, तो सोच रही हूँ चलते चलते एक गीत आप तक पहुँचा दूँ। और इस गीत की फरमाइश हमें किसने भेजी है, हमें लिखा है पीरजादा मिराजुद्दीन ने कश्मीर से, सलार पहलगाम से। तो ये रहा आपकी पसंद का गीत।

तो फिर जिनके मैसेजेस रह गए वक्त की कमी की वजह से उनसे माफी, लेकिन फिलहाल इस सफर से लेनी होगी मुझे इजाजत। इसके बाद सुनेंगे आप हिंदी अंग्रेजी में समाचार और समाचारों के उस पार में फिर से मिलूंगी लेकर तस्वीर, चलेंगे खूबसूरत जगह की सैर पर। जुड़े रहेगा आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। समारोह में आयोजित परेड में भारतीय नौसेना और थलसेना की टुकड़ियों ने भाग लिया। इस अवसर पर भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS तरकश और INS इक्षक विक्टोरिया में तैनात थे। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की जनता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। समारोह में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम भी मौजूद थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में सेशल्स भारत के विजन महासागर का एक अहम साझेदार है और इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र रामगुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और प्रगति को विशेष महत्व देता है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की संयुक्त परियोजनाओं से मॉरिशस में स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू हराइजन दिया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी ने उन्हें यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी को इससे पहले भी सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। इनमें संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल शामिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार देंगे। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। वेनेजुएला में बुधवार को 2 जबरदस्त भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,450 हो गई है। नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट जॉर रोड्रिगेज ने बताया कि 7.2 और 7.5 तीव्रता वाले 2 जबरदस्त भूकंपों के बाद देश में हल्के से मध्यम स्तर के 430 झटके महसूस किए गए। इस आपदा में 3,238 लोग घायल हुए हैं और 3,142 परिवार प्रभावित हैं। हजारों लोग अब भी दिन रात खोज और बचाव कार्यों में लगे हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तीर्थयात्रा के आधिकारिक प्रारंभ से पहले सुरक्षा व्यवस्था, काफिले की आवाजाही और समग्र तैयारियों का आकलन किया गया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। कनाडा का अगला मुकाबला शनिवार को ह्यूस्टन में नीदरलैंड्स या मोरक्को से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

भाई हमारे घुमक्कड़ दोस्त तैयार है ना तस्वीर में हमारे साथ चलने के लिए इस सफर पे। पता है आपको, जो लोग घूमते फिरते रहते हैं ना वो हमेशा खुश रहते हैं, उनके चेहरे पे आपको हमेशा स्माइल नजर आएगी। जैसे मैं मुझे तो घूमना बहुत पसंद है और जब भी मौका मिले मैं निकल जाती हूँ कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह की सैर पर। आपसे भी यही कहूंगी कि अगर मौका नहीं मिल रहा है तो मौका निकालिए, ढूंढिए वो वक्त जब आप अपने लिए जी सकते हैं, कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं। जिंदगी में देखिए काम कभी नहीं रुकते और काम तो हमेशा आपके पास लाइन लगाकर खड़े ही रहते हैं, कभी कोई काम तो कभी कोई काम। छोड़िए ना, थोड़ी देर के लिए वक्त निकालिए, कहीं बाहर जाइए, रिफ्रेश हो जाएंगे आप, परिवार के साथ वक्त मिलेगा आपको, दोस्तों के साथ वक्त मिलेगा आपको और जिंदगी जीने का असली मजा तो तभी आता है ना जब हम फुर्सत के पलों में अपने लोगों के साथ थोड़ा वक्त बिताते हैं, है ना। तो आज आपको मैं कहां ले चल रही हूं, वही जहाँ कई बार घूम के आई हूँ मैं भी। तो आज हम ले चल रहे हैं आपको गोवा। गोवा भारत का बहुत ही खूबसूरत शहर है और बीचेस के लिए बहुत फेमस है। अगर आप पानी की लहरों की सरसराहट को महसूस करना चाहते हैं तो आइए चलिए हमारे साथ गोवा के पर्यटन पर। लोग अक्सर अपनी छुट्टियां यहाँ बिताते हैं, यहाँ का माहौल बहुत ही अपना सा लगता है, शायद इसलिए क्योंकि यहाँ आपको हर उम्र के लोग दिखेंगे। गोवा राज्य को 1987 में स्थापित किया गया था। गोवा की राजधानी है पणजी और अगर आप बात करें गोवा राज्य के सबसे बड़े शहर की तो ये है वास्को डी गामा। अगर आप गोवा जाकर एक बेहतरीन याद संजोना चाहते हैं तो अक्टूबर से जनवरी का समय जो है वो सबसे उचित है, यहाँ जाने के लिए बेस्ट है। इस दौरान देश विदेशों के जो पर्यटक हैं वो यहाँ पर भारी तादाद में उमड़ते हैं और यहाँ का नए साल का उत्सव विश्व भर में मशहूर है। इस समय अलग अलग जगहों से लोग क्रिसमस और नए साल की छुट्टियां लेकर आते हैं। इस वक्त आपको यहाँ कुछ चर्चित हस्तियां भी उत्सव मनाते नजर आ जाएंगी। मौसम भी सुहाना, बीचों की लहरें आपको मोहित कर देंगी, लेकिन गोवा एक ऐसी जगह है जहां पर किसी स्पेसिफिक टाइम में जाने की जरूरत नहीं भी है। आप जब भी चले जाएं गोवा हमेशा आपका वेलकम करता है और यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के बीचेस, यहाँ का वातावरण आपका दिल जीत लेता है। साल के किसी भी महीने आप यहाँ पहुंच जाइए, गोवा आपको निराश

नहीं करेगा। वैसे बारिशों के मौसम में भी अगर आप गोवा जाए ना, तो बारिश के टाइम पर यहाँ घूमने का एक अलग ही मजा है। अगर आपको बारिश में भीगना पसंद है तो आपको गोवा इस मौसम में भी जरूर जाना चाहिए। गोवा में ठहरने की सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, हर बजट के होटल्स आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे। और गोवा में घूमने के लिए क्या क्या है, देखने के लिए क्या क्या है, सब कुछ बताऊंगी मैं आपको, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ इस सफर में रहना होगा। जुड़े रहिएगा आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस। तस्वीर का है ये सफर। 11:13 ये हो गए पूरे 14 मिनट, और चलिए गीतों के साथ साथ करते हैं इस सफर में गोवा की सैर।

गीत तो हमने छेड़ दिया, लेकिन अब सफर में आप हमारा साथ मत छोड़िएगा, क्योंकि मैं आपको गोवा में बहुत सारी खूबसूरत जगहों पर घुमाने वाली हूँ। हाँ, अब शुरू करते हैं कि कहाँ कहाँ घूम सकते हैं आप गोवा में। पालोलेम बीच एक जगह है, यहाँ पर जा सकते हैं आप। ये बीच दक्षिण गोवा के कानाकोना में स्थित है, जहाँ कतारों से लगे ताड़ के पेड़ और लकड़ी की झोपड़ियाँ बीच की सुंदरता को बरकरार रखने में पूरा सहयोग करती हैं। और ये बीच अपनी शांति और सुकून देने वाली लहरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की एक और चीज शांत है, और वो है डिस्को। यहाँ पे आप सबको निजी हेडफोन दिए जाएंगे, आप इन्हें पहनिए और वहां मौजूद भीड़ के बीच खुद में ही जम के थिरकिए और अपनी नीरस भरी दुनिया को अलविदा कह दीजिए। सच

कुछ कितना मजेदार होगा ना ये अनुभव, जब आप अपने हिसाब से अपने पसंदीदा गीत पर नृत्य कर सकते हैं। बागा बीच एक जगह है, यहाँ भी आप जा सकते हैं पैरासीलिंग और बनाना राइड के लिए। इसे जाना जाता है सबसे मशहूर बीच है ये, जो पर्यटकों में काफी लोकप्रिय है। बीच के पास काफी सारी झोपड़ियां हैं और फिशिंग बोट्स हैं। खासतौर से पैरासीलिंग और बनाना राइड्स जैसे पानी के खेल, वाटर स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पर लोग पहुंचते हैं। आपको यहाँ डॉल्फिन देखने का मौका भी मिल सकता है। लहरें बार बार आपके पैरों को छूकर गुजरेंगी तो आपको लगेगा जैसे वो लहरें अपनी कोई कीमत चीज आपके पास छोड़कर गई है। यानी कि आपको बहुत कुछ इस समुद्र के किनारे पर मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दूधसागर वाटरफॉल की, तो दूध जैसे पानी से दिखने वाला ये जो वाटरफॉल है, ये भी अपने आप में खास है। जब आप गोवा जाते हैं, मंडोवी नदी पर स्थित है ये, भारत की चौथी सबसे ऊंचे वाटरफॉल्स में से गिना जाता है, जिसकी ऊंचाई 320 मीटर है और ये भगवान महावीर सेंचुरी और मोलम नेशनल पार्क में है। तो आप यहां आकर हरियाली से ढके जंगल के साथ ही तेज गति से गिरता हुआ पानी भी देख सकते हैं, जैसे कि आपको इसके नाम से ही समझ आ रहा होगा कि पानी एकदम दूध जैसा सफेद है। तो यहाँ पर आकर आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलने वाले हैं। हाइकिंग और ट्रैकिंग भी आप यहाँ कर सकते हैं और ये गोवा पर्यटन में एक खास यादगार जगह आपके लिए हो सकती है। यहाँ आने का सबसे अच्छा जो समय है वो जून से सितंबर है, तो आपको यहाँ के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत देखने को मिलेंगे। अगर आप शांति के कुछ पल बिताना चाहते हैं तो आप गोवा के मशहूर चर्च बॉम जीसस बेसिलिका चर्च में जा सकते हैं। और ये चर्च ओल्ड गोवा में स्थित है। यहाँ सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों को सुरक्षित रखा गया है और ये चर्च अपनी वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। बात सच है कि गोवा का सबसे प्राचीन चर्च है ये, पर अभी भी इसने पर्यटन का जो पर्यटकों का ध्यान है वो केंद्रित करना नहीं छोड़ा है। आज भी यहाँ पर लोग इसे देखने के लिए पहुंचते हैं। अगोड़ा किला है जो कि उम्दा तस्वीरों के लिए जाना जाता है। पुर्तगालियों द्वारा इस किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था और ये गोवा के पर्यटन स्थल में से खास पर्यटन स्थलों में से एक आकर्षण है, जहां लोग लगभग हर मौसम में आना पसंद करते हैं। अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं और आपको बहुत अच्छा लगता है फोटोग्राफी करना, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं क्योंकि ये जगह आपके लिए सचमुच बेस्ट है। इस वजह से आप चाहें तो सैटरडे नाइट मार्केट है यहाँ पर, जहाँ आप जाकर थोड़ी शॉपिंग कर सकते हैं। उत्तरी गोवा के अरपोरा में स्थित है ये मार्केट, भारतीय और यूरोपियन लोगों में काफी फेमस है, लोकप्रिय है। अगर आप गोवा की यात्रा करने जा रहे हैं तो यहाँ पर जाना मत भूलिएगा। आप यहाँ मनचाहे तरीके से खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको तड़कते भड़कते कपड़ों से लेकर जूते, बैग, लेदर की चीजें, हस्तशिल्प, सजावटी लैंप, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएंगी। यकीनन गोवा में खरीदारी के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है ये, और पार्टी के लिए रेस्टोरेंट्स, और बहुत ज्यादा कतार में खड़े हुए आपको यहाँ पर रेस्टोरेंट्स, बार्स अलग अलग दिखाई दे जाएंगे। तो आप जहां जाना चाहें वहां जा सकते हैं। गोवा का जो टूरिज्म है वो इसलिए भी है कि जीती जागती लाइफ जो आप कहीं और नहीं पा सकते वो यहाँ आपको मिलती है, आप में एक अलग एनर्जी भर देती है। बहुत सारी और भी प्लेसेस हैं जहाँ आप जा सकते हैं, लेकिन इस गीत के बाद बताऊंगी। जुड़े रहेगा मेरे साथ इस सफर में।

0: वालों तैयार हो जाओ, दिल्ली सरकार लेकर आया है मौका।
1: 400 से भी ज्यादा आम, देखने और खरीदने का सुनहरा मौका।
2: जी हाँ, दिल्ली टूरिज्म द्वारा आयोजित 35वां आम का महोत्सव,
1: जिसमें है मैंगो ईटिंग कॉम्पिटिशन पुरुषों और महिलाओं के लिए खास, कल्चरल रंगारंग प्रोग्राम, खान पान और खरीदारी का साथ।
3: 3 से 5 जुलाई दिल्ली हाट जनकपुरी नई दिल्ली में दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम के रंग में घुलिए, आना न भूलिए।
4: तू आन है, तू शान, तू ही देश का अभिमान है, अब आप भी बढ़ाएं देश का सम्मान। शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर बनकर भारतीय नौसेना की एग्जीक्यूटिव एजुकेशन और टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन करने के लिए अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 27 जुलाई 2026। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.joinindiannavy.gov.in। जॉइन इंडियन नेवी।

वेलकम बैक, 11:27 24 सेकेंड हो चुके हैं और आप हैं आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस के साथ घूम रहे हैं तस्वीर के इस सफर में गोवा। और गोवा की सैर में मैं आपको बता रही हूँ कि क्या क्या है गोवा में देखने के लिए, कौन कौन सी ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं और आपको जरूर जाना चाहिए अगर आप गोवा जाते हैं। तो उन्हीं में से एक है मंगेश मंदिर। हाँ, और ये जो मंदिर है, अगर आप ये समझते हैं कि गोवा सिर्फ चर्चेस के लिए है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर प्राचीन शिव मंदिर भी है जिसका नाम है ये मंगेश मंदिर। आध्यात्मिकता से भरा हुआ ये प्लेस आपको जरूर एक बार विजिट करना चाहिए। तो अगर आप धार्मिक स्वभाव के नहीं भी हैं तब भी आप यहाँ बिना किसी हिचकिचाहट के आ सकते हैं। यहाँ का ध्यान आकर्षित करने वाली जो चीजें हैं उनमें से यहाँ का 7 मंजिला दियों का टॉवर है जो आपको जरूर देखना चाहिए। एक अलग ही तरह का अनुभव आपको इसे देखकर मिलेगा।

यकीनन ये गोवा पर्यटन स्थल आपके गोवा पर्यटन में जरूर शामिल होना चाहिए। तो भक्ति में लीन अगर आप होना चाहते हैं तो ये जगह मंगेश मंदिर जरूर आपको देखना चाहिए। बहुत ही शानदार है, प्राचीन है और इसकी एक अलग ही मान्यता है। नेवल एविएशन म्यूजियम है जो भारत का एकमात्र नेवल म्यूजियम है, भारत का एकमात्र ऐसा म्यूजियम जहां पर आपको पूरे एशिया में प्रचलित ये म्यूजियम जो है इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी जहां पर आप सुरक्षा बलों से लगाव करने लगेंगे। अगर आपको लगाव है ऑलरेडी तो भी आपके लिए बहुत ही खास जगह है, आपका कर्तव्य बनता है कि एक बार आपको यहां पर जरूर जाना चाहिए। आपको यहां 7 अलग अलग तरह के एयरक्राफ्ट, रॉकेट, बम, पैराशूट, पायलट की पोशाक, बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी और ये सब देखकर सचमुच आप गदगद हो जाएंगे क्योंकि भारत की जो नेवल एविएशन की जो खूबसूरती है वो आपको यहाँ पर नजर आएगी। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो टीटो नाइट क्लब जा सकते हैं, जो पार्टी पसंद करते हैं जो लोग उनके लिए ये जगह खास है। गोवा यहाँ की नाइट क्लब के लिए जाना जाता है। इस जगह की जो खासियत है वो यही है कि यहाँ पर बहुत से क्लब्स हैं, बहुत से रेस्टोरेंट्स हैं, आपको बहुत ही खुलेआम यहाँ पर एक ऐसा वातावरण देखने को मिलेगा जहाँ आप डांस कर सकते हैं और आप दिल खोल कर यहाँ पर आराम से एंजॉय कर सकते हैं। पार्टी पसंद करने वाले लोगों के लिए प्लेस बेस्ट है। क्लब में हर तरफ हो रही हलचल जो है वो आपको अलग ही अनुभव देगी। चमचमाती लाइट, साउंड म्यूजिक, मस्ती में झूमते लोग, रेस्टोरेंट्स में खाना पीना बहुत कुछ है यहाँ पर जिसे आप एंजॉय कर सकते हैं। खासकर यंगस्टर्स यहाँ पर जाते हैं और एक अलग नाइट लाइफ का मजा लेते हैं जो क्लबिंग पसंद करते हैं। इसके अलावा अंजना बीच आप जा सकते हैं, सबसे प्राचीन बीचेस में से एक है ये और ये बीच जो है वो गोवा में काफी प्रसिद्ध है, हिप्पी संस्कृति के लिए जाना जाता है और ये बीच अरब सागर में ढलते सूरज को देखने के लिए सबसे एक जगह है। आप शांति से बैठकर हर चीज महसूस करते हुए इसे जरूर अपनी आंखों से देखना पसंद करेंगे और आपको देखना भी चाहिए क्योंकि अपने आप में बहुत ही खूबसूरत लगता है। और अगर मैं आपको कहूं तो आपको ऐसी अनुभूति पहले कभी नहीं हुई होगी। ताजा पानी, रेतीले किनारे और उत्तरी गोवा में ये खूबसूरत जगह है जहां आपको एक बार जरूर विजिट करना चाहिए। चेराओं द्वीप है जो प्रकृति की गोद में स्थित है। मंडोवी नदी पर स्थित ये द्वीप पंजी के करीब है और संस्कृत में इसका अर्थ है शानदार कीमती पत्थर। ये द्वीप अद्भुत पेड़ पौधों और पशु पक्षियों के लिए लोकप्रिय है और यहाँ पर बर्ड सेंचुरी है जिसमें अलग अलग तरह के अनदेखे पक्षी आपको देखने के लिए मिलेंगे। मैंग्रोव वन भी है यहाँ पर जो आपको चिड़ियों का संगीत सुनने को मिलेगा जिसके सुनने के लिए आप यहाँ पर जब पहुंचेंगे तो सचमुच आप इस जगह की याद को कभी भुला नहीं पाएंगे। चपोरा किला है जो सेल्फी प्रेमियों के लिए भी खास है, आप चाहे तो यहाँ जा सकते हैं। अपने इतिहास के लिए लोकप्रिय चपोरा किला गोवा के प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक है। हाल के वर्षों में बॉलीवुड फिल्म की जो दिल चाहता की अगर मैं बात करूं तो इसकी शूटिंग भी यहां पर हुई थी। और इसके अलावा यहाँ से सभी दिशाओं में के जो नज़ारे हैं वो आप देख सकते हैं। हर तरफ आपको देखने के लिए इस किले से खुला व्यू मिलता है और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप ऊपर से समुद्र के अद्भुत नज़ारों का भी एक अलग ही मजा ले सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ जाने के लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना होता है, बहुत आसानी से ये बाय रोड कनेक्टेड है तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। वागाटोर बीच और अंजना बीच इसके आसपास है तो ये जगह भी आपको जरूर देखनी चाहिए। चाहे तो आप तेरेखोल किला है यहाँ भी जा सकते हैं और ये भी तेरेखोल नदी पर स्थित है। गोवा के उत्तरी सिरे पर है, अरब सागर की ओर देखने वाली एक पहाड़ी पर स्थित है और ये भी अपने आप में बहुत खास है। रीस बोगोस किला है इतिहास प्रेमियों के लिए। 1515 में पुर्तगाली वायसराय अल्फोंसो डी नोरोना ने इसका निर्माण करवाया था और आपको ये जगह जो है ये भी आसानी से देखने के लिए यहाँ पर आप जा सकते हैं। मराठों के साथ युद्ध कर रहे थे जब पुर्तगाली, तो उसका यहाँ पर इस किले में एक रक्षात्मक दीवार बनाकर एक खास तौर पर इसे कवर किया गया और अपने आप में ये भी इतिहास को संजोए हुए है तो इसे आपको जरूर देखना चाहिए। और भी बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं जो गोवा में यादगार हैं, देखने लायक हैं, जैसे कि कोजुएम किला है या फिर काबो दे राम किला है। कई किले हैं जैसे कि जिन्हें आप देख सकते हैं। बहुत सारी चर्चेज हैं, से कैथेड्रल

चर्च है, इसे भी देखना चाहिए। सबसे बड़ा एशियाई चर्च है ये, और ये भी काफी पुराना है, पुराने गोवा के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। ये भी अपने आप में एक खास जगह है, चर्च ऑफ सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी। ये भी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी घंटी के लिए जानी जाती है, यहाँ पर आपको देखने के लिए वो भी मिलेगी। और ये जगह जो है वो ईसाइयों का पूजा स्थल है, मदर मैरी की बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है यहाँ पर, जिसे आप देख सकते हैं। और पूरी दुनिया में सबसे बड़ी घंटी यहाँ पर संरक्षित है, तो इसे आपको जरूर देखना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो बहुत से बीचेस हैं यहाँ पर, गोवा बीच की लिए ही जाना जाता है, तो कलंगुट बीच यहाँ आप जा सकते हैं, बागा बीच जा सकते हैं, अंजुना बीच जा सकते हैं, और वगॉटर बीच है जो कि आप देख सकते हैं। चपोरा किला, जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये भी बीच के किनारे पर ही है। और बहुत सी ऐसी प्लेसेस हैं, जैसे कि महालक्ष्मी मंदिर है, ये भी गोवा का एक खास मंदिर है और इसे भी आपको जरूर देखना चाहिए। शांता दुर्गा मंदिर है जो अपने आप में खास है, इस मंदिर का निर्माण छत्रपति शाहू जी महाराज ने करवाया था 1738 में, तो इसे भी आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। भगवान शिव और भगवान विष्णु के लिए ये जाना जाता है, माँ पार्वती भी इस मंदिर में विराजित है, तो ये मंदिर भी आपकी इस यात्रा में एक और अनुभव जोड़ देगा। बहुत कुछ है जानने के लिए, बताऊंगी जरूर, लेकिन इस गीत के बाद।

देखने के लिए तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, मंदिर हैं, चर्चेस हैं, बीचेस हैं और बहुत से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। बहुत कुछ है गोवा में घूमने के लिए। आप चाहे तो पार्टीज के लिए, क्लबिंग के लिए यहाँ जा सकते हैं। बहुत अलग अलग जगह पर आप यहाँ घूम सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पहुँचने की, तो भाई पहुँचना कैसे है, गोवा का जुड़ाव अनेक शहरों से, देशों से है, अच्छी कनेक्टिविटी है। आप चाहे तो गोवा आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप बाय एयर यहाँ पहुंचना चाहें तो आपको क्या करना है, दबोलिम एयरपोर्ट है सबसे नजदीक, ये गोवा की राजधानी पणजी से 29 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स पहुंचती हैं। ये एयरपोर्ट यूके और जर्मनी के को भी गोवा से जोड़ता है, तो आपको यहाँ पर अगर पहुंचना है तो दिल्ली से आप गोवा के लिए सीधे फ्लाइट ले सकते हैं, आसानी से पहुंच सकते हैं, या फिर देश के किसी भी हिस्से से आप यहाँ आसानी से पहुंच सकते हैं। ट्रेन से पहुंचना चाहें तो मडगांव में स्थित जो जगह है, मडगांव और वास्कोडी गामा गोवा के मुख्य रेलवे स्टेशन है। ये रेलवे स्टेशन जो है वो अच्छी तरह से अलग अलग शहरों से जुड़े हुए हैं। भारत के अधिकतर राज्यों से यहाँ पर आप पहुंच सकते हैं, तो बाय ट्रेन भी आप गोवा आसानी से जा सकते हैं। गोवा का बस से अगर आप सफर करना चाहें तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ का जो मेन बस स्टैंड है वो है कदम्बा, जो पणजी में स्थित है, और यहाँ से आपको बिना किसी परेशानी के बस की सर्विसेज आसानी से मिल जाती हैं। प्राइवेट टैक्सी भी आप कर सकते हैं आगे की यात्रा के लिए। गोवा में घूमने के लिए आपको अलग अलग टैक्सी स्टैंड्स मिल जाएंगे, अलग अलग जगह से आपको टैक्सी मिल जाएगी, आप बुक करके भी निकल सकते हैं। तो गोवा जो है वो हर तरीके से ईजी एक्सेस में है, इजीली यहाँ पर घूमने के लिए आपको कन्विंस मिल जाएगी। और चाहे तो आप यहाँ स्कूटी ले सकते हैं किराए पर, आप उस पर भी अपनी यात्रा कर सकते हैं। गोवा में स्कूटी से घूमने का एक अलग ही मजा है, क्योंकि मैं जब गई थी तो मैंने भी स्कूटी पर यहाँ की यात्रा की थी और सचमुच यहाँ की ठंडी हवाओं में स्कूटी चलाने का भी अपना ही एक मजा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ शॉपिंग की, तो ये भी मैं आपको जरूर बताऊंगी कि कहाँ आप शॉपिंग कर सकते हैं। गोवा की गिनती भले ही भारत के सबसे छोटे राज्य के रूप में होती हो, लेकिन सच्चाई ये है कि ये बहुत ही खूबसूरत राज्य है और दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। खास तौर से साउथ गोवा को इस देश की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक के रूप में गिना जाता है और यहाँ के खूबसूरत समुद्र तटों से लेकर रेस्टोरेंट्स तक, रिजॉर्ट्स तक, सभी कुछ बहुत ही लुभावना है, बहुत ही खूबसूरत है। वैसे जब ट्रैवलिंग की बात हो तो शॉपिंग के बिना सब कुछ अधूरा लगता है, और इस लिहाज से साउथ गोवा आपको कभी निराश नहीं करेगा। साउथ गोवा में खरीदारी के लिए बहुत कुछ आपको मिल जाएगा, कंटेम्प्रेरी से ऑफबीट प्लेसेस अवेलेबल हैं यहाँ पर। आपको यहाँ पर बेहद किफायती दामों पर शॉपिंग करने का मौका मिलेगा। आप चाहे तो पालोलिन बीच चले जाइए, यहाँ पर मार्केट है। गोवा में खरीदारी की जगहों की बात करें तो बीचेस के तट पर मौजूद मार्केट में पर्यटक बहुत पहुंचते हैं, खरीदारी करते हैं, काफी पसंद करते हैं यहाँ पर बीचेस पर लोग शॉपिंग करना। और पालोलिन बीच के तट के बाजार में एक अलग हिप्पी संस्कृति आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ हर शनिवार को एक अलग तरह का बाजार लगता है, जहाँ पर आप अपनी जरूरत की कई चीजें काफी सस्ते रेट्स पर ले सकते हैं। वहीं अगर आप थोड़ा सा मोल भाव करना चाहते हैं तो आपको चीजें काफी कम दामों पर मिल जाएंगी। कोलवा बीच मार्केट है जहाँ आप जा सकते हैं। गोवा में अगर आप शॉपिंग कल्चर को बेस्ट तरीके से एक्सपीरियंस करने का सोच रहे हैं और किसी ऐसी जगह की तलाश में है, तो आपको कोलवा बीच मार्केट को एक्सप्लोर जरूर करना चाहिए। यहाँ से आप अपने करीबियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए बहुत कुछ खरीद सकते हैं। हालांकि अगर आप यहाँ शॉपिंग करने जा रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि कई बार शॉपकीपर्स आपको थोड़ी सी कीमत ज्यादा बता सकते हैं, लेकिन अगर आप मोल भाव करना जानते हैं तो आप सही दाम पर चीज खरीद सकते हैं। जगह जगह चमकदार रोशनी से बना ये बाजार भी बहुत ही खूबसूरत है। मडगांव म्युनिसिपल मार्केट है जहाँ आप जा सकते हैं, स्ट्रीट शॉपिंग के लिए काफी अच्छी जगह है। और इस मार्केट में आप आर्ट क्राफ्ट से लेकर हैंडीक्राफ्ट आइटम्स तक की चीजें जो हैं वो खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको काजू, मछली, मसाले, रसोई के सामान, यादगार सुवेनियर्स, मिठाई, कपड़े, जूते, फर्नीचर, बहुत सारी चीजें काफी अच्छे रेट्स पर, उचित दामों पर मिल जाएंगी। आप चाहे तो गोल्डन हार्ट एम्पोरियम है, अगर आप एक बुक लवर हैं तो यहाँ आप जा सकते हैं, यहाँ जरूर विजिट करिएगा। और इस जगह पर जाए बिना आपकी जो यात्रा है वो थोड़ी सी अधूरी है। ये पूरे गोवा में सबसे अच्छी किताबों की जगह है। यहाँ आपको फिक्शन से लेकर बच्चों की किताबों तक बहुत सारा कलेक्शन आपको मिल जाएगा, आप यहाँ भी जा सकते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं कि भाई गोवा में कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो बहुत ज्यादा अच्छे तौर पर मनाए जाते हैं और आपको इनको एक बार

तो भाई जब गीत इतने खूबसूरत हों तो साथ में गुनगुनाने का मन कर ही जाता है। वैसे मैं आपको बताने वाली थी कि गोवा में कौन कौन से ऐसे फेस्टिवल्स हैं जिनको आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए, जिनमें आपको जरूर जुड़ना चाहिए जाकर। तो गोवा कार्निवल का आप हिस्सा बन सकते हैं। ये मनाया जाता है फरवरी के महीने में, पहले 3 दिन और 3 रात तक बहुत ही धूम से इसे मनाते हैं। कार्निवल त्योहार जो है वो गोवा की हर गली नुक्कड़ और कोने पर नई ऊर्जा भर देता है और इसे 18वीं शताब्दी के दौरान पुर्तगालियों और औपनिवेशिक शासन के दौरान मनाया जाता था। गोवा का कार्निवल जो है वो खाने पीने के लिए, पेय पदार्थों के लिए, संगीत नृत्य और मस्ती के लिए जाना जाता है। उपवास और इसके अलावा 40 दिन की अवधि तक इसे आयोजित किया जाता है। दिन रंगीन और संगीतमय परेड के साथ गुजरता है। गोवा की राजधानी पणजी में आयोजित होता है ये और पूरे राज्य में एक अलग ही अनुभव आप यहाँ पर देखेंगे जब आप इस मौसम में यहाँ पर जाएंगे। और बाकी त्योहारों की तुलना में ये कहीं ज्यादा लोकप्रिय है यहाँ के लोगों के बीच में। लोग रात भर सड़कों पर पार्टी करते हुए नजर आते हैं। पणजी में फ्लोट परेड का आयोजन भी होता है और अपने आप में ये बहुत ही खास है, तो आपको इसका हिस्सा तो एक बार जरूर बनना चाहिए। गोवा में फेमस फेस्टिवल जो है वो क्रिसमस है। अगर गोवा में क्रिसमस का के मौके पर आप पहुंचते हैं तो बहुत ही धूमधाम से आप इसे देखेंगे, मनाया जाता है और ये एक अलग ही अंदाज में सेलिब्रेट होता है यहाँ पर। इसके लिए आपको गोवा जो है वो सबसे बेस्ट मैं कहूँ अगर भारत में जगह है तो आप के लिए ये बात बिल्कुल सही है, गलत नहीं होगी। अगर आप क्रिसमस के मौके पर गोवा जाते हैं तो सचमुच ये यादगार होगा आपके लिए। पुर्तगाली विरासत और कैथोलिक आबादी की मौजूदगी के साथ क्रिसमस बहुत ही खास होता है, यहाँ उत्साह के साथ मनाया जाता है और त्योहार ये जो मौका है मित्रों परिवारजनों समुदाय के लोगों के बीच सद्भावना के लिए जाना जाता है। क्रिसमस के मौके पर गोवा में चर्चेज और घरों को रंग बिरंगी रोशनी के साथ सजाया जाता है। बच्चे देर रात तक क्रिसमस कैरोल गाते हैं और सभी उम्र के लोग चर्चेज में जाते हैं। क्रिसमस का त्योहार जो है वो मनाने के लिए यहाँ पर देश विदेश से लोग पहुँचते हैं। अगर मैं बात करूं गोवा में नए साल के जश्न की तो ये भी बहुत जोरों शोरों से मनाया जाता है, भव्य तैयारी की जाती है। गोवा पार्टियों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। न्यू ईयर के सेलिब्रेशन की पार्टी का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितनी भव्य होती होगी। पूरी रात गोवा राज्य में जश्न और पार्टियों का माहौल रहता है। सनबर्न और सुपरसोनिक का आनंद भी जमकर लिया जाता है। आधी रात के समय 12 बजे के इंतजार में जोर जोर से गिनती होती है, नए साल का स्वागत किया जाता है, जमकर पार्टी होती है। डीजे पार्टी, संगीत, नाइट लाइफ बहुत कुछ है यहाँ पर और यहाँ के पार्टी के लिए जो गोवा के बीचेस हैं उन्हें भी एक अलग तरीके से तैयार किया जाता है ताकि यहाँ पर लोग पूरी तरह से भरपूर इस जगह का आनंद ले सकें, एंजॉय कर सकें। सेंट फ्रांसिस जेवियर का पर्व होता है एक ये गोवा में। इस दिन प्रसिद्ध संत जेवियर की मृत्यु के सम्मान के लिए इसे मनाया जाता है, जिन्हें यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा गोइंचो साहिबा या गोवा के भगवान के रूप में माना जाता है और प्रसिद्ध कैथोलिक मिशनरी थे ये। उनका जन्म 1507 में हुआ था। 1552 को चीन की सीमा से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित सेंसियस द्वीप पर उनकी उन्होंने अंतिम सांस ली थी और ये यहाँ पर शुरू होता है। ये धार्मिक त्यौहार है जो कि 3 या 4 दिसंबर के आसपास शुरू होता है। 9 दिन तक ये उत्सव मनाया जाता है और सैकड़ों की संख्या में भक्त यहाँ पर इसमें हिस्सा लेते हैं। तो यहाँ का जो माहौल है चर्च में भी एक तरह का पिकनिक जैसा माहौल हो जाता है, बहुत ही अलग तरीके से इसे दिन को यहाँ पर लोग मनाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ शिग्मो त्योहार जो है वो भी यहाँ पे मनाते हैं। शिग्मो वसंत ऋतु के दौरान मनाया जाता है और ये 5 दिनों तक यहाँ पर चलता है। शिग्मोत्सव भी कहते हैं इसे और ये त्योहार होली के पावन त्योहार के साथ आता है। इस त्योहार के अवसर पर यहाँ पर बहुत ही अलग तरह से डांस और बहुत अलग अलग आयोजन का जो मजा है वो लिया जाता है। लोग रंगों से भी यहाँ पर खेलते हैं इस दौरान। इसके अलावा साओ जुआओ फेस्टिवल है जो कि वो भी गोवा में काफी फेमस है और ये भी काफी अच्छे से मनाया जाता है। हर साल 24 जून को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इसे सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इस दिन कैथोलिक समुदाय सेंट जॉन बैप्टिस्ट को सम्मान दिया जाता है और अलग अलग तरह के नृत्यों को इसमें शामिल करते हैं जिन्हें सांगोट्स कहते हैं।

फेस्टिवल भी आयोजित किया जाता है। मैंगो फेस्टिवल यहाँ पर होता है जो गर्मियों के दौरान रहता है, और इसके अलावा दिवाली को बहुत धूमधाम से मनाते हैं, ईद उल फितर को बहुत अच्छे से मनाते हैं। तो हर धर्म को यहाँ पर इंजॉय करने के लिए कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा। तो गोवा की सैर में जब भी आप पहुंचे, इस बात को याद रखिएगा कि गोवा आपको किसी भी तरीके से निराश नहीं करेगा। आपको जरूर एक बार तो अपने जीवन में गोवा की सैर करनी ही चाहिए। फिलहाल अब वक्त बहुत कम बचा है, जल्दी से गीत सुना देती हूँ आपको, उसके बाद आगे क्या है जरूर बताऊंगी।

0: तो भाई गोवा की यात्रा में तो आज इतना ही, लेकिन ये वादा रहा कि फिर किसी और रोज किसी और सफर में आपसे मुलाकात जरूर होगी। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, आप सुनते रहिएगा आकाशवाणी मिलेगा एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, क्योंकि 24/7 आपका अपना चैनल आपके साथ यूं ही जुड़ा रहता है। वैसे एक मजे की बात पता क्या होती है रेडियो के साथ, कि आप कहीं भी जाएं फिर भी आप रेडियो को एंजॉय कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं, घूमते फिरते चलते फिरते जहां भी आप रास्ते में हैं या जहां भी हैं, एंजॉय करते रहिए आपका पसंदीदा चैनल। मैं आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस लेती हूं आज के लिए आपसे विदा। जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के साथ।
1: Medium wave kilohertz chikstong apchung aksum, yang na meters angibe yachu gyabjitang shuzurgu, yang FM megahertz gyanang chiktang shuzur chigeka, ngaji akashwani leni juin jiktangin. Nimi chutsot chungis chaduk, kasata chungis tang petsupa, filmilurik sanches la polin. Idigrimi guzupeka, satna sarga mesalkani, vishwatma filmilusanazat, lursumkan anan bakshi, yang lu yang srikan viju shah.

दक्षिणी जरंगे कुमार सानवी सलकने ये है मुंबई मेरी जान फिल्म लो सनाजाज ए फिल्म लोगुन संखलन गैसला आकाशवाणी लेने संचिसला फुलिंजिक तंगेन।

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जिसे हमें भेजा है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज जी ने। लिखते हैं,
2: पेड़ धरती के फेफड़े हैं, वे हवा को शुद्ध करते हैं और हमें नया जीवन देते हैं।
3: धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद के मासिक संस्करण का बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है।
3: आप आगे लिखते हैं, कार्यक्रम में सीआईईटी एनसीईआरटी के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर भारती कौशिक और विमलेश जी की बातचीत प्रशंसा योग्य लगी। कार्यक्रम में समावेशी शिक्षा पर सुनाई गई विस्तार पूर्वक जानकारी बेहद पसंद आई। ये जानकारी रिकॉर्ड करके परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों को भी हमने सुनवाई
2: जी।
3: इस कार्यक्रम की सभी ने तारीफ की। समावेशी शिक्षा पर विस्तार पूर्वक जानकारी सुनवाने के लिए आभार प्रकट करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है
2: गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, प्यारी बिटिया मीठी, अनाया गुर्जर और बेबी किरत ने। वो लिखते हैं,
3: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। आपका ये कार्यक्रम विविध जानकारी और मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भाषाई विविधता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऐसी बेहतरीन प्रस्तुति के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
2: जून महीने के शुरुआती समय में उमंग प्रसारण का श्रोता संवाद कार्यक्रम एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया गया जिसने इस कार्यक्रम को अर्थपूर्ण बना दिया और एक प्रकार की नवीनता का संचार किया। सभी श्रोताओं को ये नवीन संस्करण अवश्य पसंद आया होगा।
3: आप आगे लिखते हैं, इस कार्यक्रम की परिचर्चा में आपने समावेशी शिक्षा जैसे अत्यंत प्रासंगिक असमकालीन विषय की ओर सभी श्रोता बंधुओं का ध्यान आकर्षित किया। प्रोफेसर भारती जी ने बड़ी सरलता से और विस्तार पूर्वक समावेशी शिक्षा का परिचय प्रस्तुत किया
2: जी।
3: अर्थ समझाया तथा समावेशी शिक्षा और समतामूलक शिक्षा के बीच का अर्थ स्पष्ट किया। शिक्षा जगत में इन दिनों समावेशी शिक्षा की खूब चर्चा होती रहती है। उमंग कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में भी इसका विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया। ये जानकर और कार्यक्रम सुनकर बहुत ही सकारात्मकता का अनुभव हुआ। आगे आप लिखते हैं,
2: श्रोता संवाद का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। प्रोफेसर राजेंद्र पाल जी के साथ जितने भी अंक प्रसारित किए गए हैं उन सभी ने श्रोताओं के मस्तिष्क पटल पर एक गहरी छाप छोड़ी है। श्रोता संवाद हमारे और आपके बीच सक्रिय संवाद का एक विशेष सेतु है। आशा है कि उमंग प्रसारण में नवाचार,

0: रचनात्मकता, आपसी संबंध और संवाद का ये क्रम चलता रहेगा।
1: आपको बहुत बहुत धन्यवाद योगेश ठाकुर जी, आपने बड़ी खूबसूरती से श्रोता संवाद कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है, आपका धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है गोनियाना मंडी भटिंडा पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी का, लिखते हैं,
0: समावेशी शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा, हमारी जानकारी भी बढ़ी और मैं ऐसे शिक्षा प्रद कार्यक्रम जरूर सुनता हूँ। आकाशवाणी भटिंडा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने प्रसारण हमारे लिए प्रस्तुत किया है।
1: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अबासी परिवार के सभी सदस्य और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास, धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से बने रहिए आपके प्रिय शैक्षिक कार्यक्रम उमंग के साथ। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है, ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है?
0: इसका उत्तर है साथियों, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ठंडी होती हैं, लेकिन जब उनके बीच नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो गर्मी पैदा होती है।
1: हमारा दूसरा प्रश्न था, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की थी?
0: इसका उत्तर है साथियों, भीम बैठका की गुफाओं की खोज प्रसिद्ध पुरातत्वविद विष्णु वाकणकर जी ने की थी, जिसके लिए उन्हें नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
1: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न, हमारा प्रश्न था, कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, इन गुफाओं की बनावट ऐसी होती है कि गुफाओं की दीवारें और छत ध्वनि तरंगों को परावर्तित या रिफ्लेक्ट करती हैं। गुफाएं गहरी हैं इसलिए वहां बाहर का शोर भी लगभग नहीं के बराबर होता है, इसलिए वहां धीमी आवाज भी स्पष्ट सुनाई देती है।
1: और अब हमारा अगला प्रश्न, हमने आपसे पूछा था, बोर्रा गुफाओं की खोज किसने और कैसे की?
0: बोर्रा गुफाओं की खोज ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज द्वारा की गई थी।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न, हमारा अंतिम प्रश्न था, सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों?
0: सिजू गुफाओं में एक पैसेज को टूथ पैसेज कहते हैं क्योंकि वहां चट्टानों की बनावट मानव दांतों की श्रृंखला से मिलती जुलती है।
1: तो साथियों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर, और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है?
1: 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। साथ ही साथ CIET NCERT को इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी फॉलो करना ना भूलिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओ, हमारा पहला कार्यक्रम है बुधनी गई है जंगल।
0: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है जिसके द्वारा पेड़ पौधों के संरक्षण और पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: बहुत थक गया आज तो। बुधनी, अरे ओ बुधनी,
1: आई रे आई। आ गया बुधवा।
0: हाँ।
1: ले आया लकड़ी। आई इतनी सी चुब्बा कहाँ रह गया? अम्मा अम्मा अम्मा देख कितने जामुन लाया हूँ जंगल से। इतना बड़ा पेड़ ढूंढा है मैंने आज जामुन का। कल से रोज जाऊंगा बापू के साथ जंगल, वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं अम्मा। हाँ। अरे चुप भी कर, क्या करूँ इतने सारे पेड़ों का। तेरा बापू तो एक भी पेड़ ना काट सकता। रोज यही जरी मरी सी सूखी टहनियाँ तोड़ लाता है बस।
0: फिर वही बात, अरे मैं क्यों काटूँ पेड़ है? जब इतनी सारी लकड़ियों की टहनियाँ ऐसी मिल जाती है, काम तो चल जाता है ना।
1: काम चल जाता है, काम चल जाता है। हाँ नहीं तो, अरे ढेर लकड़ी लाओगे तो इतने सारे पैसे मिलेंगे बेचने से।
0: अच्छा,
1: कुछ कहना करिया, कुछ आड़े पकत के लिए कुछ समझता तो है ना। हाँ।
0: अरे भोली, जब तक जंगल है तब तक आड़ा बखत आएगा ही नहीं। ना लकड़ी की कमी, ना फल गंध की, बीमारी पड़ी तो जड़ी बूटी भी। रही गहना गरिया की बात, तो बुधनी ये जो तू जंगली फूल लगा लेती है ना कभी कभी, उसके सामने सच कहूं सारे गहना गरिया मात।
1: अब ना बहलती मैं तुम्हारी बातों से, कह देती हूँ। हाँ, या तो कल एक बड़ा सा पेड़ काट कर लाओ, नहीं तो मेरा मरा मुंह देखो। हाँ,
0: अरे अरे रोने लगी। अरे सुन तो, अच्छा अच्छा सुन, आप चुप भी हो जा बुधनी, काट लाऊंगा एक पेड़ बड़ा सा। है तो ये पाप ही, हमारा ओझा भी यही कहता है कि पूरे विधि विधान के बाद ही काटो एक पेड़ और फिर लगाओ 10 पेड़, और पुरखों की भी यही रीत है। मगर तू कलह मत कर, मैं काटूंगा पेड़।
1: बापू दुख मत कर, कल हम पेड़ काटेंगे ही नहीं है? कोई बहाना बना देंगे, ठीक?
0: हाँ यही ठीक रहेगा। अरे तू तो बड़ा सयाना है रे चुब्बा।
1: बातें कर रहे हो दोनों?
0: कुछ नहीं,
1: जरूर मुझे बुद्ध बनाने की बात होगी।
0: हाँ। नहीं नहीं नहीं,
1: अब तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। हाँ? अपने सामने कटवाऊंगी पेड़। अब तुम लोगों का कोई भरोसा है क्या?
0: नहीं नहीं नहीं, तू क्या करेगी जंगल में जाकर, हम काट लाएंगे ना एक अच्छा सा पेड़।
2: हाँ अम्मा, वहाँ ऐसे ऐसे भयानक जानवर होते हैं, ऐसे ऐसे जानवर होते हैं अम्मा।
1: अरे चुप, जैसे मैं तो कभी जंगल गई ही नहीं। मैंने तो सोच लिया है, मैं जंगल जाऊंगी ही। सुबह जल्दी उठकर सारी तैयारी करनी है, दिन भर का खाना बनाना है। अब चलो खाना खाकर जल्दी सो जाओ।

0: अम्मा अम्मा,
1: अरे अरे क्या हुआ?
2: अरे चुब्बा चुब्बा, क्या हुआ बेटा?
1: डर मत बच्चे, मैं यही हूँ तेरे पास।
2: अरे कोई डरावना सपना देखा क्या? अम्मा, क्या अम्मा, सपना देखा तूने?
0: अम्मा मुझे डर लग रहा है अम्मा।
1: कोई डरावना सपना देखा होगा बच्चे? अरे क्या देखा तूने?
0: अम्मा अम्मा, मैंने देखा कि हम जंगल में पेड़ काट रहे हैं और अम्मा पेड़ रोने लगा, मुझे मत काटो मत मारो, मुझे दर्द होता है, मेरी लकड़ी ले लो, पत्ते ले लो, फूल ले लो, फल ले लो, पर मुझे मत मारो, मैं तो तुम्हारा मीत हूँ माँ। माँ उसने ये कहा, उसने कहा अम्मा मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है अम्मा, और वो रोने लगा। अम्मा अम्मा जोर जोर से रोया, मगर हमने उसे काट ही दिया, काट ही दिया। वो चिल्लाया अम्मा, मैं भी चिल्लाया।
2: चुप्पा चुप्पा,
1: सोचा बेटे सोचा, डर मत, अरे वो तो सपना था। सोचा सोचा बेटा, मैं तेरे पास ही तो लेटी हुई हूँ यहाँ। सोचा बेटा सोचा सोचा, शाबाश, अच्छा बेटा है ना, चुप्पा तो सोएगा। सोचा सो गया, इसने तो मुझे डरा ही दिया। अरे कैसे कैसे सपने देखता है ये।
2: तो फिर कल पेड़ काटने नहीं जाना ना?
1: क्यों नहीं, बिल्कुल जाना है। जा जा सो जा, अरे वो तो सपना था, उससे क्या होता है। अरे सो जा, सुबह जल्दी उठना है।

0: चुब्बा, अरे ओ चुब्बा, अरे उठ बेटा, बुधवा उठो ना, भोर हो गई, मैं तैयारी करती हूँ चलने की।
1: अरे तो जाना ही पड़ेगा, तू मानेगी नहीं?
0: ना, मैं तो ना मानू। चल
1: चल, तेरी यही हट है तो चल चल चुब्बा।
0: अरे कुल्हाड़ी तो ले लो, पेड़ क्या हाथों से काटोगे?
1: अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था, आदत नहीं है ना।
0: आदत नहीं है, ये नियत ना है
1: वो।
0: चल चुब्बा, वो रस्सी उठा, लट्ठों को बांधना भी तो होगा ना।
2: अच्छा अम्मा।
0: अरे अब चलो भी।
1: चलो
2: चलो, चलो।

0: अरे मुंह क्यों लटका रखा है बाप बेटे ने? पेड़ की लकड़ी बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे तुम्हारे लिए भी तो चीजें आएंगी अच्छी अच्छी।
1: अम्मा मुझे नहीं चाहिए अच्छी चीजें। हाँ
2: मुझे भी नहीं।
0: ठीक है तुम लोग मत लेना, सारी अच्छी अच्छी चीजें मैं अपने लिए लाऊंगी बस।
3: तो गहना लूंगी, तो साड़ी लूंगी, गहना गरिया लूंगी, मैं तो साड़ी लूंगी, बढ़िया खाना खाऊंगी, मैं तो साड़ी लूंगी।
0: अरे बाप रे, इस जंगल में शेर भी है क्या?
2: अरे शेर तो नहीं है, कोई बघेरा वगैरह होगा। अरे डर मत, ये कुल्हाड़ी है ना, वैसे भी इस तरफ आदमियों का आना जाना लगा रहता है, इससे जानवर इधर नहीं आते।
0: फिर भी
1: अम्मा तू भी चले वापस?
0: ना वापस तो फिर भी नहीं जाएंगे हम। हाँ
1: अम्मा क्या सोच रही है?
0: यही कि कौन सा पेड़ काटना ठीक रहेगा। क्यों बुधवा, ये जामुन कैसा रहेगा रे?
2: ये जामुन?
0: हाँ
2: चलो इसी को काट देते हैं।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा इसे नहीं, ये तो फलों से लदा है।
2: हाँ।
1: हर साल फल देता है, इसे मत काटो।
0: हाँ ये बात तो ठीक है, जामुन कहाँ से खाऊंगी? तो फिर उस साल के पेड़ को काटते हैं चलो।
2: अरे रे क्या बात करती हो, वो तो अभी पूरा बढ़ा भी नहीं है, ये तो वैसे हुआ कि जैसे किसी को छुटपन में ही मरना पड़े।
0: हाय रे बात तो तुम्हारी सच है।
1: तो अम्मा ऐसा करते हैं, वो जो देवदार के बहुत सारे पेड़ है ना उनमें से एक को काट देते हैं।
0: अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। कितने सुंदर हैं ये पेड़, अरे उन्हें रहने दो। ये रोन का पेड़ कैसा रहेगा बुधवा?
2: ये
0: है भी काफी पुराना, फल भी नहीं है इस पर। तो
2: फूल तो हैं, फल भी आएंगे, अरे हजारों पक्षियों की भूख मिटाएंगे। नहीं नहीं नहीं नहीं ठीक नहीं रहेगा इसे काटना। चलो ठीक है काटना ही है तो ये नीम का पेड़ काट देते हैं।
0: अरे पागल हुआ है, ये नीम का पेड़ तो दवा दारू के काम आता है, कोई बीमारी नहीं जिसका इसके पास इलाज ना हो। हाँ
2: अच्छा तब तो अरार का पेड़ भी छोड़ना पड़ेगा है?
0: क्यों?
2: इसका भी नीम वाला हाल है, बल्कि ये तो सुना है सबकी किस्मत भी जानता है, इसे कौन काटे।
1: चलो आगे देखते हैं, कोई ना कोई बेकार पेड़ तो मिल ही जाएगा, ऐसा क्या है।
0: हाँ हाँ चलो चलो, आगे चलकर देखते हैं। चलो
4: ये देखो ये पेड़।
0: देख लो।
1: अम्मा अम्मा वो देखो ओक का पेड़, और वहीं बबूल भी है। चलो अम्मा काटे
0: चलो। इधर से निकल कर आओ।
1: अच्छा
4: ध्यान से बेटा।
1: आई
0: क्या हुआ चुप्पा?
2: क्या हुआ?
1: अम्मा अम्मा कांटा चुप गया। आई
0: अरे दिखा दो।
1: अम्मा लगता है पेड़ कह रहे हैं हमें मत काटो, हमें मत काटो। बापू इन्हें मत काटना, देखो ये रो रहे हैं।
2: ठीक है नहीं काटेंगे। हाँ।
1: देखा अम्मा कैसे लहलाने लगे, जान बचने से खुश हो रहे होंगे है ना?
2: हाँ बेटा ये देखो, ये चीड़, देवदार, ओक, खजूर और ताड़।
0: हाँ।
2: ये तो है ही सदाबहार, इन्हें काटने से क्या फायदा?
0: अरे नुकसान भी क्या है?
2: बहुत नुकसान है, हमारे पुरखे कहते थे इन्हीं की बदौलत हवा पानी साफ रहता है, बरखा होती है, बाढ़ रुकती है। सोचो हमारी तरह सभी लोग चल दें पेड़ काटने तो कितना नुकसान हो जाए।
0: रहने दो अपनी बातें, कोई और पेड़ ढूंढो। ये कौन सा पेड़ है, ना फूल ना फल?
2: क्या पता मुझे सबके नाम थोड़ी मालूम है, मगर मैं तो इसे नहीं काटूंगा।
0: क्यों?
1: देखो ना माँ ये पेड़ हजारों लाखों कीड़ों का घर है, उन्हें दूध पिला रहा है।
0: और वो वाला, उसमें तो ना कीड़े दूध पी रहे हैं, ना फल है, ना फूल है, कुछ भी नहीं है उसमें, और ना ही उससे कोई लाभ है, उसे तो काटो कम से कम।
1: नहीं नहीं नहीं, नहीं अम्मा उसे छोड़ दो। देखो अम्मा इस पेड़ की घनी पत्तियों में सैकड़ों पंछियों का घोंसला है।
2: हाँ।
1: पेड़ कटा तो वो सब बेघर हो जाएंगे। सोचो माँ अगर हमारा कोई घर तोड़ दे तो हमें कैसा लगेगा?
2: हाँ बिल्कुल
0: सचमुच, इस पर तो कोयल भी रह रही है। बुधवा रहने दे इसको भी।
2: अच्छा।
0: मुझे कोयल का गाना बहुत अच्छा लगता है, तू रहने दे इस पेड़ को। तो
2: ठीक है। अरे सुन कोयल खुश होकर तुझे धन्यवाद दे रही है बुधनी।
1: अम्मा, जिन जिन पेड़ों को तुमने बचा लिया वो सभी तुम्हें दुआएं दे रहे होंगे।
0: मुझे बनाओ मत, मैंने अभी बदला नहीं है अपना इरादा। चलो ढूंढो काटने लायक पेड़। हाँ। ले लो, इसमें हंसने की क्या बात है, चलो ढूंढो ना।
2: अरे अब कहाँ से ढूंढे, जंगल के सारे पेड़ों को तो तूने बख्श दिया, अब किसे काटे।
0: क्या सारे पेड़ों को बख्श दिया?
2: और क्या।
0: ना जी ना, अभी तो हजारों पेड़ होंगे इस जंगल में।
2: हाँ है तो सही, मगर वो सब भी इन्हीं के भाई बंद है, जो बात इनके साथ वही उनके साथ।
1: जीवा जीवा जी, अब तो पेड़ नहीं कटेगा, नहीं कटेगा।
0: अरे चुप।
2: क्या हुआ?
0: अरे चुप्पा, हाँ पेड़ अब नहीं कटेगा, तो यही बात थी ना। तुम दोनों शाम को फुसफुसा कर यही बातें कर रहे थे ना, कि अम्मा को जंगल में बहला लेंगे और पेड़ नहीं काटेंगे। है,
2: लेकिन समझ गई है?
1: तू भी तो मान गई ना कि कोई भी पेड़ कटने लायक नहीं है, अब तू ही बता किसे काटे।
2: बता?
0: रहने दे रहने दे, तुम दोनों बड़े सयाने हो, मुझे हमेशा ऐसे ही बहला देते हो। मैं जिस भी पेड़ पर हाथ रखूंगी तुम उसी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बनाओगे कि मुझे को दया आ जाएगी। हाय रे, मेरी इच्छाएं क्या कभी पूरी नहीं होंगी?
2: होंगी होंगी, जरूर होंगी, मगर ऐसे नहीं।
0: फिर कैसे?
2: चल घर, चलते चलते बताता हूँ कि कैसे।
0: चल। बता।
2: सुन, हम सब मिलकर बहुत सारे पेड़ लगाएंगे अपने घर के आगे, फिर हमें फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे, बुलबुलें आएंगी, कोयल गाएंगी, गीत गाएंगी, महुआ सींचेंगे, हम फिर मेले जाएंगे, खूब काम करेंगे, हम तीनों मिलजुल कर ताल बनाएंगे, मछली पालेंगे, मछली फल सब्जी महुआ कटहल बेचेंगे। हाँ, पैसे पाएंगे, बुधनी को देंगे, बुधनी खुश होगी, कलह नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, झगड़ेगी भी नहीं। क्यों बुधनी, तब भी झगड़ेगी क्या?
1: क्यों अम्मा, तब भी झगड़ेगी?
2: बोल ना।
0: नहीं रे नहीं, मुझे क्या शौक है झगड़ने का। चल।

0: 5 पुत्र थे जिन्हें पांडव कहते हैं। युधिष्ठिर इनमें सब में बड़े थे। युधिष्ठिर से छोटे थे भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांचों राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे। भीम गदा चलाने में बहुत कुशल थे और अर्जुन धनुष बाण चलाने में। गुरु द्रोणाचार्य समय समय पर अपने शिष्यों की परीक्षा लिया करते थे। एक दिन उन्होंने पेड़ पर मिट्टी की एक चिड़िया टांग दी। फिर राजकुमारों से चिड़िया की आंख पर बाण मारने को कहा। गुरु द्रोणाचार्य ने बारी बारी से अपने सभी शिष्यों को बुलाया। उन्होंने चिड़िया की ओर संकेत करते हुए पूछा,
1: उधर देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है?
0: किसी ने कहा,
2: गुरुजी, मुझे राजकुमार, पेड़ और चिड़िया सब कुछ दिखाई दे रहा है।
0: किसी ने कहा,
3: मुझे पेड़ और चिड़िया दिखाई दे रही है।
0: किसी ने कहा,
4: मुझे चिड़िया के पंख दिखाई दे रहे हैं।
0: अर्जुन की बारी आने पर द्रोणाचार्य ने उससे भी वही प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा,
5: गुरुजी, मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है।
0: अब द्रोणाचार्य ने बारी बारी से सभी को बाण चलाने का आदेश दिया। अर्जुन का निशाना तो ठीक आंख पर लगा, किंतु और भाइयों का निशाना चूक गया। द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को बताया,
1: क्या तुम लोग समझ गए कि अर्जुन का तीर निशाने पर क्यों लगा? जिसे केवल लक्ष्य दिखाई दे वही सफल होता है। तुम लोगों को लक्ष्य के साथ साथ और बहुत सी चीजें भी दिखाई दे रही थीं, इसलिए तुम्हारा ध्यान बट गया और निशाना ठीक नहीं बैठा। अर्जुन का ध्यान केवल चिड़िया की आंख पर था, इसलिए उसका निशाना बिल्कुल ठीक बैठा और बाण ठीक चिड़िया की आंख पर लगा।
6: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम अर्जुन का निशाना, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
7: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
6: नमस्कार।
8: उमंग उमंग उमंग उमंग।
9: दसंगे जरंगे एनसीईआरटी चिंतक जात का निर्देशन उमंग खाक चिकित्सों सुम्या चुरुप पसना जात ngaji akashwani ilene junjik tangin ngime chutsot achik chaduk kasata tusot sapigestingni akashwani delini hindi tang angrezina nasul sanajat.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी देश सेशल्स की अपनी यात्रा के तीसरे दिन आज विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायगर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने पीस पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री 3 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने कल सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लिया। ये सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ है। श्री मोदी विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू हराइजन से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स और भारत दोनों एक ऐसे विश्व के लिए प्रयासरत हैं जहां विकास अधिक समावेशी हो और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं समकालीन वास्तविकताओं पर ध्यान केंद्रित करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जन विश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुकदमों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शीलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी BLO कल से 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे और पात्र मतदाताओं से भरे हुए आवेदन पत्र एकत्र करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज नई दिल्ली के संसद भवन में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन ने श्री खड़गे को शपथ दिलाई। श्री खड़गे कर्नाटक से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण बड़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक दोपहर में लगभग 0.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स 425 अंक गिरकर 76,676 पर और निफ्टी 112 अंक कम होकर 23,944 पर था। फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन जस्टाक्यो ने एकमात्र गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जय हिंद फौजी भाइयों, इस वक्त के कार्यक्रम में आप सुनेंगे फिल्मी गीत। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं अंकित तिवारी की आवाज़ में एक विलन फिल्म से इस गीत को। गीतकार है मनोज और संगीतकार है अंकित तिवारी।

लीजिए सुनिए इस कार्यक्रम में अगला गीत अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ में अलबेला फिल्म से। इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीत दिया है जतिन ललित ने।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए अब सुनते हैं राहत फ़तेह अली खान और श्रेया घोषाल को बॉडीगार्ड फिल्म में शबीर अहमद और नीलेश मिश्रा के लिखे इस गीत को संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने।

अभी आप सुन रहे थे तमाशा फिल्म से गीत मोहित चौहान की आवाज़ में। अगला गीत लीजिए सुनिए रेडी फिल्म से, आवाज़ है तुलसी कुमारी और के की। गीतकार है नीलेश मिश्रा और संगीतकार है प्रीतम।

अभी आपने सुना पीके फिल्म से गीत सोनू निगम की आवाज़ में। फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम के अंत में फौजी भाइयों सुनेंगे शंकर महादेवन की आवाज़ में जिंदगी ना मिलेगी दोबारा फिल्म से इस गीत को। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है शंकर एहसान लॉय ने।

0: पास मिनट हो रहा है, आइए सुनते हैं आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू में खबरें, मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असदुल्ला। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में बहादुरी से मुतालिक अवार्ड पेश करेंगी। हुकूमत ने कारोबार में सहूलत पैदा करने की गर्ज से तरीक़ेकार को बेहतर बनाने से मुतालिक एक नोटिस मुतारिफ कराया है। सुप्रीम कोर्ट ने मफाद आम्मा की एक अर्जदाश्त पर फौरी समाअत करने से इनकार कर दिया है, जिसमें राम मंदिर अतियात के केस में मुबैना माली बेजाबतियों की छानबीन अदालत की निगरानी में कराने की दरख्वास्त की गई थी। हरियाणा और राजस्थान ने आज अमित शाह की मौजूदगी में जमुना के पानी की तकसीम से मुतालिक एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। दिल्ली में वोटरों की खुसूसी जामे नजरसानी मुहिम SIR के तहत वोटरों को इलेक्टोरल फॉर्म्स घर घर जाकर तकसीम किए जाने का अमल कल से शुरू होगा। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम शेख हसीना ने कहा है कि वो जान से मारने की धमकियों के बावजूद इस साल के आखिर से पहले तक बांग्लादेश वापस चली जाएंगी। और फीफा वर्ल्ड कप में लॉस एंजलिस में खेले गए पहले नॉकआउट मैच में कनाडा ने जनूबी अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में बहादुरी से मुतालिक 2026 की दिफा की दूसरी तकरीब में बहादुरी इनामात अता करेंगी। वो दिफाई अफवाज, मरकजी मुसलह पुलिस दस्तों और रियासत व मरकज के जेर इंतजाम पुलिस के अमले को बहादुरी के इनामात शाम 5 बजे अता करेंगी। ये इनामात मुसलह दस्तों, मरकजी पुलिस फोर्सेज और दीगर हिफाजती एजेंसियों के अमले के बहादुरी के गैर मामूली कारनामों को तस्लीम करते हुए दिए जाते हैं। इन इनामात से पूरे जम्मू कश्मीर, शुमाल मशरक और मुल्क की सरहदों पर दहशतगर्दी, शोरिश पसंदी और मुखासिमाना धमकियों की रोकथाम के लिए भारत की लगातार जद्दोजहद की अक्कासी होती है। नीज एविएशन, समंदरी कार्रवाइयों और इंसानी हमदर्दियों वाले मिशनों में गैर मामूली हौसले के इकदाम उजागर होते हैं। सदर मुर्मू ने इससे पहले इस तकरीब के पहले मरहले में भी बहादुरी इनामात अता किए थे। ये तकरीब राष्ट्रपति भवन में इस माह की 8 तारीख को मुनाकिद की गई थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के अपने दौरे के तीसरे दिन आज विक्टोरिया में नवाशक्ति विनय नागर मंदिर का दौरा किया और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां भारत निजात अफराद से मुलाकात भी की। बाद में वजीर आजम ने पीस पार्क में वाकई महात्मा गांधी के मुजस्मे पर गुलाय अकीदत नजर किए। जनाब मोदी सेशल्स का अपना 3 रोजा कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद भारत रवाना हो गए हैं। कल वजीर आजम मोदी ने सेशल्स की आजादी के 50 साल पूरे होने के मौके पर वहां के कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत की। जनाब मोदी ने इस तकरीब में एजाजी मेहमान के तौर पर शिरकत की। इस तरह वो भारत के पहले वजीर आजम है जिन्हें ये एजाज दिया गया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: इस परेड में भारतीय बहरिया और फौज की टीमों पर मुश्तमिल एक मार्चिंग दस्ते ने शिरकत की। इसके अलावा भारत के एक बहरी बैंड ने भी शिरकत की, जिससे भारत और सेशल्स के दरमियान करीबी शराकतदारी का इजहार होता है। खैर सगाली के खसूसी जज्बे के तौर पर INS तरकश और INS इश्तियाक को पोर्ट विक्टोरिया पर लगा अंदाज किया गया, जिससे सेशल्स के साथ भारत की देरीना दोस्ती का अंदाजा होता है। वजारत खारजा के मुताबिक भारत और सेशल्स के दरमियान देरीना दोस्ती है, जिसकी जड़ें मुश्तरका तारीखी, सकाफती और अवाम से अवाम के दरमियान रिश्तों से वाबस्ता हैं। भारतीय बहरीन खत्ते में एक अहम समुद्री पड़ोसी के तौर पर सेशल्स का मकाम भारत के विजन महासागर और आलमी जनूब के तई भारत के अहद में खसूसी हैसियत का हामिल है। वजारत खारजा ने बताया कि जनाब मोदी के इस दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत और पायदार दोस्ती का इआदा होता है और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को फरोग देने में दोनों मुल्कों के मुश्तरका अहद की भी अक्कासी होती है। आशीष अब्राहम की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल मालिक।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी को माहौलियाती तहफ्फुज और पायदार तरक्की के शोबे में क्यादत पर सेशल्स के आला तरीन एवार्ड गार्जियन ऑफ द ब्लू होरिजन से भी नवाजा गया। वजीर आजम ने सेशल्स की कौमी असम्बली से भी खिताब किया, जहां उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सेशल्स और भारत ऐसी दुनिया के क्याम के ख्वाहिशमंद हैं जहां तरक्की के फायदे सबको हासिल हों और जहां बैन अल-अक़वामी इदारों में असर हाजिर के हकाइक की अक्कासी होती है।

0: this evening. 3-decade pending Yamuna water sharing project between Haryana and Rajasthan gets approval today. Supreme Court refuses urgent hearing on PIL seeking court-monitored probe into alleged financial irregularities in Ram Mandir donations case. CBSE exempts current Class 10 batch from three-language policy. Government introduces improvement notice mechanism to promote ease of doing business. SIR set to begin in Delhi tomorrow. And in FIFA World Cup, Canada beat South Africa 1-0 in first knockout match at Los Angeles. President Draupadi Murmu will present gallantry awards at the second Defence Investiture Ceremony of 2026 at Rashtrapati Bhavan in New Delhi today. The President will confer gallantry awards to personnel of the Defence Forces, Central Armed Police Forces and State and UT Police at 5 p.m. These awards are given in recognition of exceptional acts of bravery by personnel of the Armed Forces, Central Armed Police Forces and other security agencies. The awards reflect India's continuing battle against terrorism, insurgency and hostile threats across Jammu and Kashmir, the Northeast and along the country's borders, while also recognizing acts of extraordinary courage in aviation, maritime operations and humanitarian missions. President Murmu had earlier conferred gallantry awards at the Defence Investiture Ceremony Phase 1 at Rashtrapati Bhavan on the 8th of this month. Prime Minister Narendra Modi today visited and offered prayers at the Navashakti Vinayagar Temple in Victoria, Seychelles, on the third day of his visit to the African country. He also met the members of the Indian diaspora there. Later, the Prime Minister paid floral tributes at the Mahatma Gandhi statue situated at Peace Park today. He has since departed for India after concluding his successful 3-day visit to Seychelles. Yesterday, Prime Minister Modi attended the National Day celebrations of Seychelles, marking the 50th anniversary of independence of the country. Mr. Modi attended the celebrations as the guest of honour, becoming the first Indian Prime Minister to be accorded this honour. More from our correspondent.
1: Prime Minister Narendra Modi's 3-day visit to Seychelles marked a significant step in strengthening bilateral ties. During the visit undertaken at the invitation of President of Seychelles, Dr. Patrick Harmony, the two leaders held wide-ranging talks covering cooperation in healthcare, education, capacity building and maritime security and defense. They also discussed regional challenges in the Indian Ocean region, including illegal fishing, drug trafficking and piracy. Several MOUs and agreements in areas such as UPI, health, agriculture, shipping, space cooperation, extradition and line of credit were also exchanged between the two countries. Mr. Modi was also conferred the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. He also addressed a special sitting of the National Assembly, becoming the first Indian Prime Minister to do so, reaffirming India's commitment to its long-standing partnership with Seychelles. With Ankit and Bisnu, this is Vishal Das, Akashvani News, Delhi.
0: The Central Board of Secondary Education, CBSE, today issued guidelines on the three-language policy. In a statement, the board said the current batch of Class 10th will not have to follow the new language policy. It also said the current batches studying in Class 7th, 8th and 9th will also not be required to give the board examination in the third language when they reach Class 10th. CBSE has further stated that students in the 7th, 8th and 9th classes who have already opted for two foreign languages will be allowed to continue with the same while studying one additional native Indian language. The board said the grade appropriate resource material will be made available in a time-bound manner. The government has introduced the improvement notice mechanism under the Legal Metrology Act 2009 through the Jan Vishwas Amendment of Provisions Act 2026. Under the new mechanism, businesses committing specified first-time procedural or regulatory non-compliances will be given an opportunity to rectify the deficiency before penal proceedings are initiated. The Ministry of Consumer Affairs said the reform aims to promote ease of doing business by encouraging voluntary compliance, reducing unnecessary litigation and supporting a more trust-based regulatory framework while maintaining strong consumer protection. The ministry highlighted that under the new mechanism, a legal metrology officer can issue an improvement notice to businesses committing specified first-time procedural or regulatory violations, giving them reasonable time to correct the deficiencies. The Supreme Court today refused an urgent hearing on a PIL seeking a court-monitored probe and forensic audit into alleged financial irregularities in donations received by the Sri Ram Janmabhoomi Tirtha Kshetra Trust. The bench of Justices M.M. Sundresh and Sheel Nagu questioned the urgency and directed that the plea be listed after the court reopens following the summer vacation. A Delhi court today extended till July the 11th the judicial custody of 10 accused in the NEET UG 2026 paper leak case being investigated by the Central Bureau of Investigation, CBI. The accused were produced before the Rouse Avenue court through video conferencing on the expiry of their earlier judicial custody. Earlier on June the 15th, the Rouse Avenue court had extended the judicial custody of the 10 accused till today. The CBI has so far arrested 13 accused in the case and is investigating an alleged network involved in procuring and circulating NEET UG question papers ahead of the examination. Congress President Mallikarjun Kharge today took oath as a member of the Rajya Sabha at the Parliament House in New Delhi. Vice President and Rajya Sabha Chairman C.P. Radhakrishnan administered the oath to Mr. Kharge, who got re-elected to the upper house from Karnataka. Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju, Health Minister Jagat Prakash Nadda, senior Congress leaders Sonia Gandhi and Priyanka Gandhi were present on the occasion. Union Home Minister Amit Shah today chaired a meeting on signing of a water-sharing agreement between Haryana and Rajasthan in New Delhi. Union Minister for Jal Shakti C.R. Patil, Chief Minister of Haryana Naib Singh Saini and Chief Minister of Rajasthan Bhajan Lal Sharma were also present at the meeting. Addressing the event, Mr. Patil said under the agreement, Rajasthan's share of water will be supplied from the Hathni Kund Barrage via an underground pipeline routed through the Western Yamuna Canal system during the monsoon season. He said this will ensure a long-term solution for drinking water needs in Churu, Sikar, Junjunu and other water-stressed regions of Rajasthan. He said continuous dialogue and efforts have taken place on this matter over the past few years and a consensus on the project's implementation framework was reached between the two states during a meeting held on the 23rd of this month. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. The house-to-house distribution of electoral enumeration forms to voters under Special Intensive Revision SIR in the National Capital Territory of Delhi will begin tomorrow. Chief Electoral Officer of Delhi, Ashok Kumar, announced this while briefing the media in New Delhi today. He said booth-level officers will visit every household from tomorrow till the 29th of next month to distribute the enumeration forms and collect the duly filled applications from eligible electors. Mr. Kumar said that claims and objections can be filed between the 5th of August and the 4th of September. The final electoral roll will be published on the 7th of October.
2: Around over 13,000 PLOs have been deployed for this exercise and enumeration forms have already been provided to all of them. The PLOs will begin the distribution drive from tomorrow morning. In addition to the physical distribution, electors also have the option of filing and submitting the enumeration form online.
0: In Jammu and Kashmir, Lieutenant Governor Manoj Sinha performed the Pratham Puja at the Holy Cave Shrine of Sri Amarnath Ji, marking the ceremonial start of the annual pilgrimage. The annual Yatra will officially begin on July the 3rd and is scheduled to culminate on August the 28th. After the special prayers, Mr. Sinha said the administration, Sri Amarnath Ji Shrine Board, Army, Police, Security Forces, local community service providers and volunteers were working in complete synergy to ensure a safe, hassle-free and memorable pilgrimage for the Yatris. Mr. Sinha added that the authorities and people of the UT were fully prepared to welcome the Yatris and significant facilities have been put in place for smooth conduct of the pilgrimage. In Odisha, the sacred city of Puri today resonated with unparalleled spiritual fervor as lakhs of devotees gathered for the annual Devasnan Purnima, the ceremonial harbinger of the world-famous Rath Yatra. Our correspondent reports on one of the most significant observances in the Jagannath tradition. More from our correspondent.
3: Lakhs of devotees witnessed the sacred Devasnana Purnima of Lord Jagannath at Puri today, marking the ceremonial commencement of this year's Rath Yatra festivities. Amid an atmosphere of profound devotion, Lord Jagannath, Lord Balabhadra, Devi Subhadra and Lord Sudarshan were ceremonially escorted in the traditional Pahandi Vijay procession from the Sanctum Sanctorium to the Snana Mandap, accompanied by the reverberating strains of concerts, cymbals and temple percussion. In accordance with centuries-old temple traditions, the deities were ritually bathed with 108 pitchers of sanctified fragrant water drawn from the sacred Sunakua or golden well within the temple precincts. Following the elaborate ablution, the deities were adorned in the distinctive Gajanana or Hathi Vesa. They will now remain in ritual seclusion during the fortnight-long Anasara period before reappearing for the Navajovana Darsana ahead of the annual Rath Yatra scheduled to commence on the 16th of next month. Prakash Das, Akashwani News, Bhubaneswar.
0: Commerce and Industry Minister Piyush Goyal is leading a high-level Indian business delegation to Athens in Greece after concluding his visit to the United Kingdom with a focus on strengthening trade, investment and strategic economic cooperation. The Commerce and Industry Ministry said during the visit to Greece, the delegation will participate in presentations and startup pitches at the Athens Startup Business Incubator. The delegation will also hold focused roundtable discussions with Indian and Greek industry leaders at the Athens Chamber of Commerce and Industry, covering infrastructure, digitalization and defense, and food and agriculture. Former Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina has said she will return to Bangladesh before the end of this year, despite facing legal cases, a death sentence and a ban on the political activities of the Awami League. Raising fresh questions over the exclusion of one of the country's largest political parties from the political process. In an interview with a TV channel, Hasina described the cases against her as politically motivated and accused the current authorities of using the judiciary to eliminate the Awami League from Bangladesh's political landscape. Hasina's remarks came as the Awami League observed its 77th founding anniversary amid a nationwide ban on its activities and extensive security measures. China has imposed new export controls on 40 Japanese entities, accusing them of contributing to Japan's remilitarization as tensions between the two countries continue to rise. China's Commerce Ministry placed 20 entities on an export control list. In the knockout stage of the FIFA World Cup, Canada beat South Africa 1-0 for its first knockout match victory at Los Angeles in the United States. Stephen Eustachio of Canada scored the goal in the second minute of second half stoppage time. Co-hosts Canada hung on with strong defensive play in the final minutes and advanced to face the Netherlands or Morocco in Houston on Saturday, July the 4th. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. The Met Department also predicted heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Kerala and Mahe till Wednesday. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu to present gallantry awards at Rashtrapati Bhavan in New Delhi this evening. Three-decade pending Yamuna water-sharing project between Haryana and Rajasthan gets approval today. Supreme Court refuses urgent hearing on PIL seeking court-monitored probe into alleged financial irregularities in Ram Mandir donations case. CBSE exempts current class 10th batch from three-language policy. Government introduces improvement notice mechanism to promote ease of doing business. SIR set to begin in Delhi tomorrow. And in FIFA World Cup, Canada beat South Africa 1-0 in first knockout match at Los Angeles. With that, we end the midday news.
4: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया अब समाचार विस्तार से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा एक रिपोर्ट
5: इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सशस्त्र बलों केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं ये सम्मान देश की आतंकवाद उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं साथ ही विमानन समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे समाचार कक्ष से वैष्णवी
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं यात्रा के अंतिम दिन श्री मोदी ने विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायकर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की बाद में प्रधानमंत्री ने पीस पार्क में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की ब्यौरा हमारे संवाददाता से
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई गति देने वाली रही इस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमेनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य शिक्षा समता निर्माण समुद्री सुरक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ावा देने पर सहमति जताई साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने मादक पदार्थों की तस्करी और समुद्री डकैती जैसी चुनौतियों पर विचार विमर्श किया यात्रा के दौरान यूपीआई स्वास्थ्य कृषि नौवहन अंतरिक्ष सहयोग प्रत्यर्पण और लाइन ऑफ क्रेडिट से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उनके योगदान के लिए गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजंस से भी सम्मानित किया गया यह पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान है इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कल सेशल्स की नेशनल असेंबली के विशेष सत्र को भी संबोधित किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने विशाल और विष्णु के साथ अंकित कुमार आकाशवाणी समाचार दिल्ली
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे समझौते को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी उपस्थित थे इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत राजस्थान के हिस्से का पानी मॉनसून के दौरान हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली से होकर गुजरने वाली भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा।
7: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चुरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
4: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा का अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI जांच के अंतर्गत 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। आरोपियों को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और शीलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जन विश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया गया है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
8: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि इस सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुद्दों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत विधिक मापन अधिकारी संबंधित संस्थान को सुधार सूचना जारी कर कमियों को दूर करने के लिए उचित समय देंगे। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सुधार कर लिया जाता है तो दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि ये व्यवस्था निर्माताओं, आयातकों, पैकरों, डीलरों, मरम्मतकर्ताओं, व्यापारियों, लघु और मध्यम उद्यमों और अन्य विनियमित संस्थाओं पर लागू होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार उपभोक्ता संरक्षण को कमजोर किए बिना पारदर्शी और कारोबार अनुकूलन नियामकीय व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
4: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 8 नवनिर्वाचित और पुनः निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इन सदस्यों में कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा के M नागराज, पंजाब से भाजपा नेता तरुण चुग, गुजरात से मानसिंह मेरामन परमार और जितेंद्र मेघजी भाई कंजरिया, राजस्थान से डॉ अलका सिंह, मणिपुर से अधिकारी मयूम शारदा देवी और महाराष्ट्र से NCP नेता राजेंद्र हीरा लाल जैन शामिल हैं। तमिलनाडु में करूर से AIADMK विधायक MR विजय भास्कर ने आज विधानसभा अध्यक्ष JCD प्रभाकर को अपना इस्तीफा सौंपा। श्री प्रभाकर ने बताया कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही विधानसभा से इस्तीफा देने वाले AIADMK विधायकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी BLO कल से मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे।
9: जो हमारे लिए डेट है हाउस टू हाउस, जिसमें BLOs एक एक घर जाकर सभी इलेक्टर्स को इनुबरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई तक फॉर्म वापसी की भी डेट है। और इसके लिए जो हमारे 13,033 बूथ्स हैं, वो सभी पे BLOs अपॉइंटेड हैं, तो सभी BLOs को उनके इनुमरेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं, जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है।
4: मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मध्य गुजरात क्षेत्र पर केंद्रित दो दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्र सम्मेलन का आज वडोदरा से जीएसएफ से विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय आवास तथा शहरी मामलों और विद्युत मंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने औद्योगिक विकास को गति देने में विद्युत क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ योजना के कारण भारत ने इस ग्रीष्मकाल में 271 गीगावाट की रिकॉर्ड चरम बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कलकत्ता की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
10: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। समाचार कक्ष से अमीशा।
4: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि कानूनी मामलों, मौत की सजा और आवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध के बावजूद वे इस वर्ष के अंत तक बांग्लादेश लौटेंगी। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में शेख हसीना ने अपने खिलाफ जारी मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार न्यायपालिका के बल पर आवामी लीग को देश के राजनीति से बाहर करने का प्रयास कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा संपन्न कर वार्षिक अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज अद्वितीय आध्यात्मिक उत्साह का माहौल रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरी में वार्षिक देव स्नान पूर्णिमा के लिए लाखों श्रद्धालु एकत्र हुए।
3: आज पुरी में लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के पवित्र देवस्नान पूर्णिमा समारोह देखा, जो इस साल की रथ यात्रा की उत्सव की औपचारिक शुरुआत है। सदियों पुरानी मंदिर परंपराओं के अनुसार देवताओं को मंदिर परिसर के भीतर स्थित पवित्र सुना कुआ यानी स्वर्ण कुप से लाए गए पवित्र सुगंधित जल के 108 घड़ों से स्नान कराया गया। विस्तृत स्नान के बाद देवताओं को गजानन के रूप में सजाया गया। अब वे अणसर के 2 हफ्ते लंबी अवधि के दौरान एकांतवास में रहेंगे और अगले महीने की 16 तारीख को शुरू होने वाली सालाना रथ यात्रा से पहले नव जौवन दर्शन के लिए फिर से प्रकट होंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
4: फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल और माहे में बुधवार तक तेज बारिश की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: Medium wave kilohertz chikstong apchung aksum, yang na meters ngibegya chugyab jitang shuzur gu, yang FM megahertz gyanang chiktang shuzur chigeka, ngaji akashwani leni juin jiktangin. Ngimi chuzut ngistang pechaduk, kasata ngistang skarma ngapchung angatsupa, ladak selurik sanches la apulin. Ina tsangme sangsungun la, skalzang lame salkani ilubo sanazat.

इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।

जाते हैं। ये पुरस्कार जम्मू कश्मीर पूर्वोत्तर और देश की सीमाओं पर आतंकवाद, उग्रवाद और शत्रुतापूर्ण खतरों के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में असाधारण साहस के कार्य को भी मान्यता देते हैं। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अन्य केंद्रीय मंत्री और सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

ने आज नई दिल्ली में डीआरडीओ को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन डीएफपी 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि डीएफपी 2026 अनुसंधान और विकास, पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकी के तेजी से उत्पादन, रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाया है, इससे देश के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक सस्ती और सुलभ हो गई हैं। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ब्रिक्स सीसीआई के प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उभरती प्रौद्योगिकियों में इसकी अग्रणी भूमिका उद्योग संगठनों को मजबूत अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने का एक आदर्श अवसर प्रदान करती है, जो राष्ट्रीय विकास और वैश्विक प्रगति में योगदान देती है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जय हिंद फौजी भाइयों। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं सांवरिया फिल्म का गीत शांत की आवाज़ में। गीतकार है समीर और संगीतकार है मोंटी।

अभी आप सुन रहे थे एयरलिफ्ट फिल्म का गीत अमल मलिक और अरिजीत सिंह की आवाज़ों में। लीजिए अब सुनिए अरमान फिल्म का गीत सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने।

अभी आप सुन रहे थे देदनादन फिल्म के गीत राहत फ़तेह अली खान और सुजन डी मिलो की आवाज़ों में। लीजिए अब सुनिए डोली की डोली फिल्म का गीत राहत फ़तेह अली खान की आवाज़ में। गीतकार है कुमार और संगीतकार है साजिद वाजिद।

अभी अब कार्यक्रम के आखिर में दोस्ताना फिल्म के गीत ईशान की आवाज़ में सुन रहे थे। इस गीत के साथ आज का ही कार्यक्रम समाप्त होते हैं। हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।

0: द्वारी।
1: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है? क्या हुआ?
0: फीस की टेंशन।
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही।
3: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल।
2: वो कहाँ है?
3: मिठाई।
4: आरबीआई कहता है
5: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

कंजारिया, डॉक्टर अलका सिंह, अधिकर्मियम श्रद्धा देवी और राजेंद्र हीरालाल जैन शामिल हैं। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश, पार्लिमानी अमूर के वजीर किरेन रिजिजू, ऐवान के लीडर और वजीर सेहत जगत प्रकाश नड्डा भी इस तकरीब पर मौजूद थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्री अमरनाथ जी गुफा में प्रथम पूजा में शिरकत की और इसके साथ ही सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा का रस्मी तौर आगाज हुआ। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आलमी इंसानियत की फलाह बहबूद, नीज अमन अमान के लिए प्रार्थना की।

0: लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि 3 जुलाई से शुरू होने वाली यात्रा के बेहतर इनेकाद के लिए श्राइन बोर्ड, फौज, पुलिस, हिफाजती अमले और मकामी लोगों के लिए रजाकार बाहमी तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों के तावुन से बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाया गया और श्रद्धालुओं को हर तरह की सहूलियात बहम कराई जा रही है। यात्रा दोनों रास्तों से 28 अगस्त तक जारी रहेगी। बाद में मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा,
1: बाबा का आशीर्वाद हम सब लोगों ने प्राप्त किया। देश भर के श्रद्धालुओं से मेरा आग्रह होगा कि वे आए धैर्य से और आराम से बाबा के दर्शन करें। ये महाराज श्राइन बोर्ड, जम्मू कश्मीर प्रशासन, हमारे सुरक्षा बल सबने मिलकर के श्रद्धालुओं के लिए बेहतर इंतजाम करने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि गत वर्ष से बेहतर यात्रा इस साल हो सके।
0: इस मौके पर डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन प्रभात, स्पेशल डीजी कोऑर्डिनेशन एसजीएम गिलानी, एलजी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के सीईओ डॉक्टर मनदीप के भंडारी, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग, आईजीपी कश्मीर वीके बिरदी और कई दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। दरियासना आज श्री अमरनाथ जी यात्रा के ऐसे इनेकाद के लिए श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर मुख्तलिफ महकमों और एजेंसियों की तरफ से एक मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया। हमारे कुलगाम के नुमाइंदे खुर्शीद पटरू ने खबर दी है कि इस मकसद के लिए शाहरा को आज 6 घंटों के लिए ट्रैफिक के लिए बंद किया गया था। इधर श्रीनगर पुलिस की जानब से भी सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के ताल्लुक से पारिमपोरा और मलूरा इलाकों में यात्रा के रास्ते पर मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया। अनंतनाग के एसएसपी अमोद अशोक नागपुरी ने रेलवे स्टेशन हरनाग में एक मीटिंग के दौरान यात्रा के ऐसे इनेकाद के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने संत कबीरदास जयंती के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। मुबारकबादी के एक पैगाम में एलजी ने कहा कि संत कबीरदास जी की इंसानियत, रवादारी और इत्तेहाद के असूलों पर मबनी तालीमात हर दौर में समाज को तहरीक बख्शती रहेंगी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर को आलमी सतह का एक एक्सपोर्ट हब बनाने के हुकूमत के अज़्म को दोहराते हुए कहा कि मकामी कारीगरों, सेल्फ हेल्प ग्रुपों, दस्तकारों और ज़राअत पर मबनी कारखानेदारों को मार्केटिंग की बेहतर सहूलियात फराहम की जाएंगी। एसकेआईसीसी श्रीनगर में आज बायर सेलर मीट 2026 का इफ्तिताह करने के बाद तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ अशिया की बरामदात के काफी वसाइल मौजूद हैं जिन्हें बरोकार लाने से यहां के मुआशी ढांचे को दवाम हासिल होगा। इस बायर सेलर मीट में 30 बैन अक्वामी और कौमी सतह के बायर शिरकत कर रहे हैं। वजीर आला ने वहां लगाए गए स्टॉलों का भी मुआयना किया। तकरीब पर वजीर आला के मुशीर नासिर सलवानी और कई दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। इसी दौरान वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर तक पंजाब के रास्ते माल मवेशी पहुंचाने वाली गाड़ियों से मुबैन तौर गैर कानूनी तौर फीस वसूल करने का मामला पंजाब के वजीर आला भगवंत मान के साथ उठाया है। एक मकतूब में वजीर आला ने ऑल कश्मीर होलसेल मटन डीलर्स यूनियन की तरफ से उजागर किए गए ताजरों और ट्रांसपोर्टरों के मसाइल पंजाब के वजीर आला की नोटिस में लाए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बिला जवाज फीस वसूल करने से यहां माल पहुंचाने में ताखीर होती है और ट्रांसपोर्टरों नीज ताजरों को माली मुश्किल से दो चार भी होना पड़ता है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज राबता दफ्तर श्रीनगर में कई अरकान कानून साजे और अवामी वफूद से मुलाकात की और अपने अपने मसाइल और तरक्याती जरूरियात उनकी नोटिस में लाए। बीरवा के एमएलए मोहम्मद शफी वानी, एमएलए पहलगाम मोहम्मद अल्ताफ वानी, एमएलए शांगस रियाज अहमद खान, एमएलए राजपुरा गुलाम महिद्दीन मीर, एमएलए सोनावारी हिलाल अकबर लोन के अलावा मुतादिद वफूद ने वजीर आला के साथ मुलाकात की। वजीर आला ने उनके मसाइल गौर से सुने और यकीन दिलाया कि हुकूमत इन मसाइल को हल करने के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम करेगी। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर और डीटीएच पर भी समाप्त कर सकते हैं। भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने आज ओमपुरा बड़गाम में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में बड़गाम जिले के बीएलओज, सुपरवाइजर्स और चुनाव अमले से जुड़े फील्ड अहलकारों के साथ एक बातचीत की और उन्हें जमहूरी अमल के मुख्तलिफ पहलुओं से मुतलिक रोशनास कराया। इस मौके पर उन्होंने चुनाव अमल में बीएलओज के रोल को उजागर किया। बाद में मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा,
2: आज हमारा जनतंत्र के स्तंभ द पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी बड़गांव के बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ संवाद हुआ। हम लोगों ने इस बात पर भी चर्चा की कि दुनिया के सबसे पारदर्शी चुनावी प्रक्रियाओं का एक हिस्सा मतदाता सूची की तैयारी, मतदान और मतगणना सभी की सभी राजनीतिक दलों या कैंडिडेट द्वारा कॉन्करेंटली ऑडिट होती और भारतीय चुनाव की इस प्रक्रिया को देखते हुए सन 2026 भारत इस समय विश्व के सभी बड़े लोकतांत्रिक देशों का नेतृत्व कर रहा है और इंटरनेशनल आइडिया का चेयरपर्सन भी।
0: चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हमरा जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर संजीव वर्मा, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बड़गाम अथर आमिर खान और कई दीगर अफसरान भी थे। जम्मू कश्मीर को मनुष्यात की बिद्दत से छुटकारा दिलाने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शदोमत से जारी हैं। मनुष्यात के खिलाफ LG का पैगाम।
1: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार्ड आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी।
0: इस बिद्दत पर काबू पाने के लिए दरकार इकदाम और लोगों की जिम्मेदारियों के ताल्लुक से एक समाजी कारकुन खुर्शीद अहमद रिशी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा।
3: जम्मू कश्मीर के LG साहब के शुक्रगुजार है और उमर अब्दुल्ला साहब के भी हम शुक्रगुजार है जो इस पे सिटर्स दे रहे हैं कि नशा मुक्त भारत यहाँ बनना चाहिए। हम गुजारिश करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट को जो है कि सरबरा है कि जो नशा है उनको ग्रास रूट लेवल पे देखा जाए और ये नशा यहाँ से दूर किया जाए।
0: ज़राअत और देही तरक्की के वजीर जावेद अहमद डार ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 में शिरकत की। ज़राअत के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान की सदारत में मुनक्कद इस सम्मेलन में मुख्तलिफ फ्लैगशिप प्रोग्रामों के तहत देही बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम करने से मुतलिक अमूर पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। जावेद अहमद डार ने जम्मू कश्मीर की तरक्याती तरजीहात और इस सेक्टर से जुड़े दीगर मामलों को उजागर करते हुए UT में देही तरक्की के प्रोग्रामों की मौसर अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए मरकजी हुकूमत का भरपूर तआवुन तलब किया। सेहत और तिब्बी तालीम के वजीर सकीना एतू ने आज लाइसू कुलगाम में एक अवामी दरबार का इनेकाद किया। इस दौरान उन्होंने लोगों के मसाइल और तरक्याती जरूरियात के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि उजागर किए गए तमाम मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा। बाद में उन्होंने इलाके में वाटर सप्लाई स्कीम का भी इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत लोगों के मयारी हयात में बेहतरी लाने की वादाबंद है। खुराक, सिविल सप्लाईज और अमूर सार्फीन के वजीर सतीश शर्मा ने आज रेलवे स्टेशन जम्मू से सोमनाथ जी यात्रियों के एक जत्थे को गुजरात में सोमनाथ मंदिर के लिए झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने इस यात्रा की रूहानी अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि इस यात्रा से मुख्तलिफ खित्तों के लोगों के माबेन कौमी यकजहती और बाहमी एतमाद को तकवीत हासिल होती है। महकमे सेहत के वर्कर और इम्यूनाइजेशन टीमों ने आज जम्मू कश्मीर के सभी अजला में घर घर जाकर 5 साल तक की उम्र के उन बच्चों को पोलियो मुखालिफ कतरे पिलाए जो कल किसी वजह से पल्स पोलियो मराकज पर नहीं आ सके थे। ये बात काबिल जिक्र है कि कल मुल्क भर में 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पल्स पोलियो मुहिम के तहत पोलियो मुखालिफ कतरे पिलाए गए। जम्मू कश्मीर की सरकार ने तकरीबन 19 लाख बच्चों को 2 बूंद जिंदगी के मुहिम के दायरे में लाने का हदफ मुकर्रर किया है। BJP से ताल्लुक रखने वाले राज्यसभा मेंबर तरुण चुग ने आज राज्यसभा मेंबर की हैसियत से हल्फ लिया। इस मौके पर उनके हमरा BJP जम्मू कश्मीर के सदर और मेंबर पार्लियामेंट सत शर्मा और जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में हिजब इख्तलाफ के लीडर सुनील शर्मा भी थे। दरियासना BJP जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल ने पार्टी हेडक्वार्टर पर कई दीगर लीडरों के हमरा मीटिंग का इनेकाद करके तंजीमी अमूर का जायजा लिया। वादी के एक मारूफ ड्रामा नवीस और कलमकार प्रोफेसर डॉक्टर अमर मालमोही इंतकाल कर गए हैं। उनके इंतकाल पर कई अदबी और समाजी तंजीमों ने दुख और सदमे का इजहार किया है। कल्चरल एकेडमी की सेक्रेटरी हरविंदर कौर ने आजहानी के फौत होने पर दुख और सदमे का इजहार करते हुए आजहानी की वफात को अदबी दुनिया के लिए एक बड़ा नुकसान करार दिया है। दूरदर्शन श्रीनगर के साबिक DDG डॉक्टर रफीक मसूदी, महजूर फाउंडेशन के सदर पीरजादा अब्दाल महजूर और अदबी मरकज कमराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट ने भी आजहानी की वफात पर दुख का इजहार किया है। ताजियत करने वालों में दायरे अदब दलिना के नायब सदर शाहिद दलनवी, अहद जरगर मेमोरियल रिसर्च फाउंडेशन के सदर खुर्शीद अहमद जरगर, महक ड्रामेटिक क्लब श्रीनगर, इंदर कल्चरल फोरम सुंबल, हिदायतकार शेख तारिक जावेद, अदाकार गुलफाम बारजी और रेडियो लिसनर्स एसोसिएशन के सदर साहिल डार शामिल हैं। जंगलात और माहौलियात के वजीर जावेद अहमद राणा ने आज मेंढर पुंछ में ICICI बैंक शाख और ATM सहूलत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत हर एक शहरी को माली शमूलियत

0: मोबाइल चार्ज करना,
1: दिमाग चार्ज कर अपना।
2: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
1: देखा
0: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
2: अब क्या करोगे?
0: फ्री वाईफाई है ना।
1: बुद्धू सुधर जा।
2: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
0: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
2: RBI कहता है
3: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र बिहार, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरलम के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ग्रीस के विकास मंत्री ताकिस थियोडोरिकाकोस से आज ग्रीस में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, औद्योगिक सहयोग और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से भारत ग्रीस आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस अतिरिक्त निवेश का उपयोग NIIF के अवसंरचना केंद्रित दूसरे कोष की स्थापना के लिए किया जाएगा। अवसंरचना कोष द्वितीय के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इससे परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और शहरी अवसंरचना तथा ई मोबिलिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के अंतर्गत अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। ये विधेयक असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने, असामाजिक तत्वों की कड़ी सजा देने के उद्देश्य से पारित किया गया है। चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अधिनियम बनने के बाद इन विधेयकों को असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती से लागू किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में डीआरडीओ को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन डीएफपी 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि डीएफपी 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकी के तेजी से उत्पादन रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। हरियाणा राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा।
2: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चुरू सीकर झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समृद्ध और विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब गांव समृद्ध आत्मनिर्भर और विकसित हो। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिन के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि गांव केवल लाभार्थी ही नहीं बल्कि विकास के प्रेरक शक्ति भी हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
3: Applications launch is going to play a very important role.
4: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
3: लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर।
0: श्री नड्डा ने कहा कि देश भर में लगभग 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर नागरिकों के लिए प्राथमिक संपर्क केंद्र है जो पहले दूसरे तथा तीसरे स्तर के स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक मजबूत सेतु का काम करते हैं। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के गुना जिले के अपने 4 दिन के दौरे के दौरान लगभग 350 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पर्यावरण सिंचाई रेलवे सड़क बिजली स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास से संबंधित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से त्रिपुरा और नई दिल्ली के बीच की दूरी काफी कम हो गई है। उन्होंने बताया कि बेहतर संपर्क के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। आज अगरतला के राजकीय अतिथि गृह में समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबके विकास के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने आज दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी। इसे 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों विशेष रूप से शून्य

0: उत्सर्जन वाहनों पर केंद्रित है। हमारी संवाददाता सौम्य शरण की रिपोर्ट।
1: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि अगले चार वर्षों में इस नीति पर लगभग 7000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं 8000 करोड़ रुपए की लागत से 30000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन और अन्य अवसंरचनात्मक तैयारियां की जाएंगी,
2: जिसमें हमने खरीद से प्रोत्साहन दिया है, ट्रैकिंग से प्रोत्साहन दिया है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन की छूट भी इस पॉलिसी में दी गई है।
1: वहीं 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस नीति से दोपहिया, तिपहिया, चार पहिया वाहन और N1 ट्रक जैसी वाहन लाभान्वित होंगे। इससे परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी और दिल्ली एक स्मार्ट सिटी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना, उपकरण या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन कई खबरों का भी खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि भारत के पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। इकाई ने कहा कि खुदरा पेट्रोल दुकानों पर ऐसा कोई होर्डिंग नहीं लगाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ोन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का

वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा होर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के एक नए दौर की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान ने इस संबंध में बैठक का अनुरोध किया है और ये बातचीत दोहा

0: होगी। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है कि उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। दोहा में तकनीकी वार्ता की खबरों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच सीधी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। क्षेत्रीय संघर्ष के बाद से 28 फरवरी से दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क निलंबित था। देश में इस वर्ष मई में वार्षिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP पर आधारित औद्योगिक उत्पादन 5.1% की वृद्धि हुई। बीते अप्रैल में देश के औद्योगिक उत्पादन 4.9% की वृद्धि हुई थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 372 अंक घटकर 76,728 पर बंद हुआ। उधर नेशनल

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद

एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए स्थान पक्का कर लिया है। आईसीसी ने पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं देर रात 2 बजे जर्मनी और पराग्वे आमने सामने होंगे। अमेरिका के फुलटन में किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के उपविजेता रहे। पुरुष सिंगल्स फाइनल में श्रीकांत को चीनी ताइपे के सू लियांग से हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर पश्चिम

में किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के उपविजेता रहे। पुरुष सिंगल्स फाइनल में श्रीकांत को चीनी ताइपे के सू लियांग से हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में कल तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी तेज बारिश हो सकती है।

0: दोनों मुल्कों के रिश्तों में इजाफा होगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि गुज़िश्ता 50 बरसों से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और मुश्तरका तरक्की पर उस्तवार रहे हैं, जबकि आइंदा 50 साल जिद्दत, पायदार तरक्की और इज्तिमाई खुशहाली से इबारत है। मज़ीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: अपने दौरे के आखिरी दिन जनाब मोदी ने विक्टोरिया के नवाशक्ति विनायागार मंदिर का दौरा किया और वहां पूजा की। वहां उन्होंने भारतीय बिरादरी के अरकान से भी मुलाकात की। वजीर आजम ने पीस पार्क में नस्ब महात्मा गांधी के मुजस्मे पर फूलों का नजराना भी पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने सेशल्स के 50वें योम आज़ादी की तकरीबात में शिरकत पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने सेशल्स के सदर डॉक्टर पैट्रिक हरमीनी, हुकूमत और आवाम का शुक्रिया भी अदा किया। सेशल्स की नेशनल असेंबली को खिताब करने वाले वो भारत के पहले वजीर आजम बन गए हैं। दौरे के दौरान दोनों मुल्कों के माबैन UPI, ज़राअत, जहाज़रानी, खलाई तआवुन, मुलज़मान की हवालगी और लाइन ऑफ क्रेडिट समेत मुतअद्दिद शोबों में मुफाहमत नामों पर दस्तखत किए गए। न्यूज़ डेस्क से उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
0: सरमायाकारी और बुनियादी ढांचे से मुतालिक कौमी फंड NIIF में हुकूमत हिंद की मजमूई सरमायाकारी अब 60,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। ये इकदाम मुल्क में बुनियादी ढांचे और कौमी अहमियत के हामिल दीगर शोबों में सरमायाकारी के लिए हुकूमत के पुख्ता अज़्म की अक्कासी करता है। पिछले हफ्ते मरकजी काबीना ने मजकूरा फंड में 30,000 करोड़ रुपए की इजाफी सरमायाकारी की मंजूरी दी थी, ताकि बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों में सरमायाकारी में तेजी लाई जा सके और मुल्क में घरेलू और बैन अलावामी इदारा जाती सरमायाकारों को रागिब किया जा सके। वजारत खजाना के मुताबिक ये इजाफी रकम सरमायाकारी और बुनियादी ढांचे से मुतालिक कौमी फंड NIIF के बुनियादी ढांचे पर मरकूज दूसरे फंड के क्याम के लिए इस्तेमाल की जाएगी, जो साबिका अहम फंड की जगह लेगा। सनअती पैदावार के इशारिये IIP के मुताबिक मई 2026 के दौरान भारत की सनअती पैदावार में सालाना बुनियाद पर 5.1% का इजाफा हुआ। इससे कबल अप्रैल में सनअती पैदावार की शरह नमू 4.9% थी। मई के आदादोशुमार अप्रैल के आदादोशुमार के बाद जारी किए गए हैं, जो कि नए बुनियादी साल 2022-23 के तहत असर नौ तश्कील शुदा IIP सीरीज के पहले आदादोशुमार थे, जिसमें जदीद तरीन मसनूआत की फहरिस्त, वजन और मुख्तलिफ शोबों की ज्यादा जामे शमूलियत शामिल है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मगरबी बंगाल कानून साज असेंबली ने आज मगरबी बंगाल अवामी तहफ़ और समाजी मुखालिफ सरगर्मियों की रोकथाम से मुतालिक बिल 2026 और मगरबी बंगाल में अमन अमान कायम करने के से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को मंजूरी दी। मजकूरा बिल की हिमायत में 176 वोट हासिल हुए, जबकि मुखालफत में 41 वोट पड़े, वहीं 20 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इस बिल के तहत ऐसे अफराद को जिनकी समाज मुखालिफ सरगर्मियों से आवाम की सलामती, अमन अमान और नज्म नस्क को खतरा लाहक हो सकता हो, उन्हें एहतियाती तौर पर ज्यादा से ज्यादा 12 माह तक हिरासत में रखा जा सकता है। हुकूमत के मुताबिक इस कानून का मकसद समाज दुश्मन अनासिर की सरगर्मियों पर काबू पाना, उन्हें सख्त सजा देना और उनकी साजिशी मनसूबाबंदी को नाकाम बनाना है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में हरियाणा और राजस्थान की हुकूमत ने आज नई दिल्ली में जमुना आबी प्रोजेक्ट की तामीर और उस पर अमल दरामद के लिए एक मफाहमत नामे पर दस्तखत किए। इस मौके पर बात करते हुए जनाब शाह ने कहा कि इस मफाहमत नामे से हरियाणा और राजस्थान के लोगों को तकरीबन 3 दहाइयों से दरपेश पानी के मसले का हल हो गया है। उन्होंने कहा कि ये मुआहिदा वजीर आजम नरेंद्र मोदी के उसूल मुजाकिरात के जरिए हल की एक बेहतरीन मिसाल है। वजीर मौसूफ ने यह भी कहा कि इस मुआहिदे के तहत अगले माह से अक्टूबर तक 3 जेर जमीन पाइपलाइंस के जरिए यमुना कनाल से राजस्थान को तकरीबन 580 मिलियन क्यूबिक पानी मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन पाइपलाइन से दोनों रियासतों के आवाम को पीने का पानी मुहैया हो सकेगा। इस दौरान जल शक्ति के वजीर CR पाटिल ने कहा कि इस मुआहदे के तहत मानसून के मौसम में राजस्थान के हिस्से का पानी हथनी कुंड बैराज से वेस्टर्न यमुना कनाल के निजाम के रास्ते बिछाई गई जेर जमीन पाइपलाइन के जरिए

0: फराहम किया जाएगा।
1: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बेरा से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: दिल्ली काबीना ने आज दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। अगले महीने की पहली तारीख से शुरू होने वाले 4 साल मरहलेवार रोल आउट के लिए मुकर्रर कसीर जैती फ्रेमवर्क 31 मार्च 2030 तक कौमी दारुल हुकूमत को मुकम्मल तौर पर कार्बन के सिफर इखराज की तरफ मुंतकिल करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए के बड़े मालियाती अखराजात का अहद करता है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में स्ट्रेटेजिक तहकीक और तरक्याती प्रोजेक्टों की कारकर्दगी, जवाबदेही और बरवक्त अमलावरी के लिए DRDO DFP 2026 को मालियाती इख्तियारात का एक वफ़ जारी किया। इस मौके पर जनाब सिंह ने कहा कि DFP 2026 दिफाई अफवाज में तहकीक और तरक्की के एक निज़ाम से निकलने वाले निज़ाम और उभरती हुई टेक्नोलॉजी की तेज़ तर पैदावार और शमूलियत में सहूलत फराहम करेगा। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि हुकूमत ने बुनियादी, सानवी और तीसरे दर्जे के तिब्बी सहूलती मराकज में तौसी करके मुल्क के सेहत निज़ाम को नुमाया तौर पर मजबूत किया है। नई दिल्ली में सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी कौंसिल की 16वीं कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब नड्डा ने कहा कि शहरियों और सेहत निज़ाम के दरमियान राबते के पहले मरकज के तौर पर मुल्क भर में 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर कायम किए जा चुके हैं। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल बरतानिया का अपना दौरा मुकम्मल करने के बाद यूनान के एथेंस में एक आला सतही भारतीय कारोबारी वफ़ की क़यादत कर रहे हैं। जनाब गोयल ने आज यूनान के तरक्यात के वजीर टाकिस थियोडोरी काकोस से मुलाकात की। जनाब गोयल ने कहा कि उन्होंने वसी तर तजारत, सरमायाकारी, सनती तावुन और लचकदार सप्लाई चेन्स के जरिए भारत यूनान इक्तिसादी शराकतदारी को मजबूत करने पर तबादले ख्याल किया। अमरीका और ईरान ने एक दूसरे पर फौजी हमले को आर्जी तौर पर रोकने और आबनाए हुरमुज से तजारती बहरी जहाजों की आमदोरफ्त दोबारा शुरू करने पर इत्तेफाक किया है। इस दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि दोनों ममालिक के दरमियान मुजाकिरात का एक नया दौर कल कतर की राजधानी दोहा में होगा। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बताया कि ईरान ने मीटिंग की दरख्वास्त की थी और ये मीटिंग दोहा में होगी, ताहम उन्होंने मुजाकिरात के एजेंडे या दोनों ममालिक की नुमाइंदगी की सतह के बारे में मजीद तफसीलात फराहम नहीं की। ऑपरेशन एमिस्टेड के तहत जलजले के मुतासिर वेनेजुएला में तैनात भारतीय फौज का फील्ड अस्पताल मुकम्मल तौर पर फाल हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त तिब्बी खिदमात फराहम कर रहा है। वेनेजुएला में भारतीय सिफारत खाने ने कहा कि तजुर्बेकार डॉक्टरों पर मुश्तमिल भारतीय तिब्बी टीम ने कराकस में इंटरनेशनल ला रिंकोनाडा रेस्ट्रिक पर एक कैंप कायम किया है। उसने कहा कि मेडिकल कैंप अब मुकम्मल तौर पर काम कर रहा है और खिदमात 24 घंटे खुली रहती हैं। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने मुल्क के शिमाल मशरिकी इलाकों, जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला और माहे में कल शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। IMD के मुताबिक अगले 2 रोज के दौरान उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी शदीद बारिश होने का इम्कान है। भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम 2028 में लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई करने वाली पहली टीमों में शामिल हो गई है। ताहम मर्दों की टीम को बराह रास्त क्वालिफाई करने के लिए रवा साल के अख्ताम तक ICC की मर्दों की T20 की रैंकिंग में एशिया की सबसे आला दर्जे की टीम बनना होगा। बैन अलाक्वामी क्रिकेट काउंसिल ने इस बात की तस्दीक की है कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और जुनूबी अफ्रीका ने लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक खेलों में खवातीन टी20 मुकाबलों में अपनी जगह यकीनी बना ली है। यूएस ओपन बैडमिंटन में भारतीय सरकर्दा खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत मर्दों के सिंगल्स के फाइनल में चीनी ताइपे के सूली यांग से हार गए और उन्हें चांदी के तमगे पर इक्तफा करना पड़ा। इस हार में बीडब्ल्यूएफ के खिताब के लिए श्रीकांत के इंतजार को और बढ़ा दिया है क्योंकि उन्होंने 2017 में बीडब्ल्यूएफ सुपर सीरीज के दौरान फ्रेंच ओपन में अपना आखिरी बैन अलाक्वामी खिताब जीता था। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मुनाकिदा दिफाई एजाजात की तकरीब में बहादुरी के एजाजात अदा किए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेशल्स के साथ 50 साल पुरानी शराकत दारी अब जिद्दत तराजी, पायदार तरक्की और मुश्तरका खुशहाली के जरिए मजीद मुस्तहकम होगी। वजीर आजम सेशल्स का कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस पहुंच गए हैं। मरकजी काबीना ने मुल्क में बुनियादी ढांचे की तरक्की में तेजी लाने की खातिर सरमायाकारी और बुनियादी ढांचे से मुतालिक कौमी फंड NIIF में 30,000 करोड़ रुपए की इजाफी सरमायाकारी की मंजूरी दी है। मगरबी बंगाल असेंबली ने समाज मुखालिफ सरगर्मियों पर काबू पाने के लिए अवामी तहफ्फुज और समाज मुखालिफ सरगर्मियों की रोकथाम से मुतालिक बिल को मंजूरी दी है। भारतीय महकमा मौसमियात ने कल मुल्क के शुमाल मशरकी इलाकों जैली हिमालयी बंगाल बिहार महाराष्ट्र में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: ngasi akashwani leni junjik tangin sane chu chot gunang pe charu kasata chamba chundol tang thopa gun sarkani e lugun sana jat